कि जो पिछले दिनों में और आइंदा दिनों में पेश किया जाएगा मेरे ज़रिए से और हमारे बच्चे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलमात यहाँ पे आके पेश करते हैं। ये दरहकीकत एक दुआ है, इमाम ने दुआ फरमाई है। लेकिन दुआ पढ़ने से पहले मैं शान दुआ, कब ये दुआ हुई है, दरहकीकत करबला के वाक़े में सरजमीन करबला से पहुँचने से, सरजमीन करबला पर पहुँचने से पहले इमाम को चार शहादतों की खबर दी गई और उन शहादतों का अलग अलग तरह से असर हुआ और इमाम पर उसका असर हुआ। इमाम के साथ जो लोग थे उसका भी असर हुआ, उन पर भी असर हुआ। एक शहादत जो मकाम सालबिया पे जिसकी खबर दी गई, वो दो शहादत एक साथ जनाब मुस्लिम इबन अकील और हानि इबन उरवा की, आप जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। लेकिन मकाम ज़ुबालह पे कैस इबन मुसहर सैदावी जो इमाम के कासिद थे और इमाम का ख़त लेकर जनाब मुस्लिम तक जा रहे थे और रास्ते में गिरफ्तार किए गए, बल्कि ये आखिर का मरहला है जब गिरफ्तार किए गए और शहीद किए गए। तारीखी उससे लगता है कि एक मरतबा और भी पहले आ जा चुके थे और एक तवील मुसाफत थी जो मक्के से, इमाम मक्के में है और लोगों ने कूफे से तकादा किया है, तो ये तकरीबन 2000 किलोमीटर की मसाफत थी जो घोड़े से तय करनी थी। अरब की सरजमीन पर शदीद गर्मी थी, यानी शदीद गर्मी इस मानों में कि करबला का वाकया जो पेश आया है वो 10 अक्टूबर को पेश आया है। 10 अक्टूबर हिंदुस्तान में थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन अरब में गर्मी ही रहती है। लेकिन उससे पहले जो हिस्सा होता है सितंबर का और अगस्त का, वो सबसे ज़्यादा शदीद गर्मी का होता है। तो ये जो इमाम का सफ़र हो रहा था, या इमाम जो कासिद भेज रहे थे और जो कासिद आ रहे थे, वो बिल्कुल पीक की गर्मी थी। जो जो लोग जाते हैं करबला की सरजमीन पे गए हैं या अरब की सरजमीन पे गए हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि जब टेम्परेचर जो है वो 50 के आसपास हो जा रहा होता है, तो आमतौर से दिन में लोग नहीं जाते। हम लोग भी जब अरबईन में जाते हैं तो दिन में माफ़ कीजिएगा, दिन में बहुत ही कम लोग जो है वो मश कर रहे होते हैं, और अगर करते भी हैं जो लोग, तो वो सुबह के वक्त में या तो शाम में सूरज के बाकायदा ढल जाने के बाद, चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद होती है। लेकिन ये वहाँ मुमकिन नहीं था। इमाम जो कारवान ले कर चल रहे थे तो उसी गर्मी में और बिल्कुल शदीद वाली गर्मी में, जो आशूर से भी ज़्यादा गर्म था, आशूर भी अलबत्ता गर्म ही मरहला था। चूँकि हम पहली बार जब करबला गए थे, हम खुद जो हमें याद है 25-26 साल पहले, तो नवंबर में, शुरू के नवंबर में गए थे, लेकिन हमें याद है किस तरह किस गर्मी के मंजिल से गुजर रहे थे, जो आपको हिंदुस्तान में नहीं महसूस होती। तो उससे पहले का मरहला बहुत ही सख्त होता है। ये 2000 किलोमीटर का सफ़र जो कासिद तय कर रहे थे, उन्हें बहरहाल इमाम का ख़त पहुंचाना था, इमाम का पैगाम पहुंचाना था, फिर पैगाम को लेके आना था। जनाब मुस्लिम की तरफ से जो पैगाम आना था कि अब कूफे के हालात हैं क्या है, वो लेके आना था। तो इमाम के दो कासिद थे, दो की शहादत की खबर आई, दोनों को पकड़ा गया, अलग अलग जगहों पर उनको पकड़ा गया। एक कैस इब्ने मुसहर सैदावी और दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने यक्तर। ये चार अफराद हैं कि जिनकी शहादत की खबर इमाम को करबला पहुंचने से पहले ही पहले मिल चुकी थी। तो मकाम सालबिया पे जनाब मुस्लिम इब्ने अकील और हानि इब्ने उरवा, जो एक बड़े कबीले के सरदार थे जिनके पास एक बड़ा लश्कर था, लेकिन कमजोरियों की वजह से और धोखे की वजह से वो लश्कर नहीं आया और वो शहीद कर दिए गए। अब्दुल्लाह इब्ने यक्तर की शहादत की खबर कल जो आपके सामने जिक्र किया था, उदयबुल हिजाना सेकंड लास्ट मंजिल पे, वहाँ इमाम को मिली। तो जब शहादत की खबर मिलती थी तो इमाम, जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिली तो वहाँ पे इमाम ने एक जुमला फरमाया कि और भी कुछ बातें जो आपने सुनी हुई हैं, लेकिन एक जुमला इमाम का है। इमाम ने फरमाया कि ला खैरा फिल ऐश बादहा।

के दिलों में डाल दी थी। दो चीजों को अलग करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, वरना बहुत सारी चीजें इंसान समझ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं उसके लिए। तो ऐसे हालात, वो उन हालात की तरफ हमें नहीं जाना था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि तारीख का ये मरहला गुजरा था और अभी जो है मुस्लिम ने अकील की शहादत की खबर आई, हानि इब्ने उरवा की शहादत की खबर आई, इमाम ने फरमाया कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, कोई खैर जिंदगी में नहीं रहा। और जब अब्दुल्लाह इब्ने जब माफ कीजिएगा जब मकाम ज़ुबाला पे, ये मकाम सालविया है, ये सब मंजिलें थी जहां जहां इमाम ठहर रहे थे। जब मकाम सालविया पे कैस इब्ने मुतहर सैदावी की शहादत की खबर आई मकाम ज़ुबाला पे, तो वहां पे इमाम ने फरमाया ये आयत पढ़ी, मिनल मोमिनीन अर्रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, मोमिनों में से कुछ ऐसे मर्द हैं कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा कर दिया। शहादत की खबर आई थी, ये सब करबला के पहले की शहादत, ये वो मर्द थे जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया था और इमाम की इताअत में गए थे। वो 2,900 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, घोड़े दौड़ाते हुए, भूख में, प्यास में, जान जाने का खतरा है, बाद लोगों की जान चली गई जो इमाम का हिस्सा नहीं थे इमाम के कारवान का, लेकिन सिर्फ आए थे ताकि रास्ता दिखाएं, जो आपको मैंने पहले बताया आपकी खिदमत में। और वहां पे इमाम ने फरमाया कि उन्होंने सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, उन्होंने उस वादे को सच कर दिखाया, सच्चे तरीके से वादे को पूरा किया जो अल्लाह से वादा किया हुआ था। अल्लाह से किसी का वादा हो तो वो इमामत की इताअत में आएगा, अल्लाह से अहद हो तो इमामत की इताअत में इस तरह से आएगा कि कोई परवाह किए बगैर अपने बच्चों की, अपने नस्लों की, अपने बीवी की, उनका भी अपना खानवादा था, इमाम का खत पहुंचाना है, लोगों तक ये खत पहुंच जाना है, रास्ते में गिरफ्तार किए गए। और उनके अब ये वाकया मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन एक इशारा करके कि उन्हें शहीद भी इस तरह से किया गया, जब पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आए, दरबार में लाने के बाद कहा कि दो ही रास्ता है, या तो अभी आपको मार दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, या तो अभी आपको कत्ल कर दिया जाए, या ये कि चौराहे पे चलें या दरबार के सामने आकर सबके सामने हुसैन इब्न अली के लिए और अमीरुल मोमिनीन के लिए, अमीरुल मोमिनीन से बनी उमैया की दुश्मनी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन का जिक्र भी मोमिनों के दरमियान में सबसे ज्यादा है, उसकी वजह है अजीजों। तो या तो अभी मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, या दरबार में सामने खड़े होके, बिल्कुल सामने जो चौराहा है वहां पे लोगों के दरमियान में हुसैन इब्न अली के लिए बुरा भला को और अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला को, बचने का यह रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कहूंगा, ये नहीं कहा कि मैं क्या कहूंगा, कहा कि मैं चल के चरा वहां पे दारुल अमारा पे अपनी कहूंगा। उनको वहां पे ले जाया गया तो वहां पर असल में दरहकीकत इमाम हुसैन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था, अगर यूं ही मार दिए जाते तो पैगाम ना पहुंचता। यह हिकमत होती है एक मोमिन के अंदर, यह हिकमत और यह फरासत होती है कि हम पैगाम लेके आए हैं तो पैगाम कैसे पहुंचे, अब तो पकड़ लिए गए हैं या तो जेल में डाले जाएंगे, फौरन मार दिया जाएगा, तो पैगाम कैसे पहुंचे। कहा कि ठीक है तुम क्या कह रहे हो, वहां चल के कुछ कहना है तो हाँ ठीक है मैं कहूंगा। ले गए और जाने के बाद जब उनको सबके सामने खड़ा किया गया इस खुशी में कि अभी अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बोलेंगे और हुसैन इब्न अली के खिलाफ कुछ बोलेंगे, उन्होंने इब्ने मरजाना पे लानत भेजी, यजीद पे लानत भेजी और हुसैन इब्न अली और अमीरुल मोमिनीन पे सलवात पढ़ी और कहा कि मुस्लिम इब्न अकील का खत में लेके गया था, इमाम तुम तक आने वाले हैं तो अपने आप को आमादा कर लो, पैगाम पहुंचा दिया। यानी कूफे के लोगों पे हुज्जत तमाम हो गई। तकरीबन यही मरहला जो है तारीख में अब्दुल्लाह इब्ने यख्तर के लिए लिखा है जिनकी शहादत की खबर आखिरी सेकंड लास्ट मंजिल पे उज़ैबुल हिजानात पे आई। जब उनकी शहादत की खबर आई तो इमाम ने वहां पर यह दुआ फरमाई, ये दुआ मैंने आज आपके सामने पढ़ी, ये दुआ पढ़ते हैं फिर एक दो मतलब अर्ज करते हैं। यहाँ पे इमाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा जाल लना, तीन लोग पहले शहीद हो चुके उनकी खबर आ चुकी है, ये चौथी शहादत की खबर आई है करबला के वाक़े से पहले, फरमाया अल्लाहुम्मा जाल लना वलशियतना मंजलन करीमा, ऐ मेरे अल्लाह हमारे लिए और हमारे शियों के लिए
عزت اور بلندی کا

कि पहले दिन से ये मतलब मैं अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक आज पांचवी मजलिस हो गई और कल ही कोई हमारे ब्रादर कह रहे थे कि मुहर्रम ऐसा महसूस होता है, आज अभी भी नीचे कह रहे थे कि आज पांचवी मजलिस हो गई, पांचवी की शब आ गई, चार दिन गुजर गया मुहर्रम का। तो बहुत सारी चीजें मुमकिन है इंसान ना सारी बातें कह पाए, लेकिन एक बुनियादी मसला है जो आपके सामने अर्ज करना था अजीजों की 28 फरवरी 10 रमजान के बाद से जो हालात पूरे बनते आए हैं और इस साल जो हम यहाँ मुहर्रम में दाखिल हुए हैं, एक जुमला हम पहले कह चुके हैं कि पूरी तारीख में कोई मुहर्रम ऐसा नहीं रहा कि जहां पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, ये हुआ है तारीख में सन 61 हिजरी में कि मुहर्रम में कुर्बानी दी गई है और फिर मुहर्रम के बाद के वाकयात पेश आए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मुहर्रम से पहले हुसैन इब्ने अली के जिक्र के वक्त के आने से पहले ऐसे हजारों लोगों ने राह हुसैन इब्ने अली पे चल के ऐसी कुर्बानी दी है जिसने तारीख का पूरा रुख बदल दिया है। मुमकिन है आपको अभी बहुत ज्यादा वो नजर ना आ रहा हो, जिनको नजर आ रहा है वो समझ रहे हैं और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। सिर्फ जाहरी हालात नहीं, सिर्फ इक्तसादी और पॉलिटिकल हालात नहीं, बल्कि अभी मुझे कुछ लोग मिले थे नीचे, कहीं और गए, बता रहे थे कि इतना ज्यादा दिलों में तब्दीली आई है। इनकलाब इसी को कहते हैं, जब दिलों में तब्दीली आ जाए। इनकलाब, इनकलाब के लफ्ज आमतौर से बड़े बड़े इनकलाबात में मुल्कों के लिए इस्तेमाल किया, फला मुल्क में इनकलाब आया, फला मुल्क में इनकलाब आया। ये मुल्कों उल्कों के इनकलाब कोई माना नहीं रखता है, कुछ कोई खास फर्क नहीं होने वाला होता, सिर्फ निजाम बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, एक हुकूमत थी दूसरी हुकूमत आ जाती है, लेकिन असली इनकलाब उस वक्त होता है जब किसी के दिल में इनकलाब आ जाए। क्योंकि ये लफ्ज बना ही है दिल से, ये मतलब पहले बताया गया यहां पर, कभी हतमन बताया गया होगा, लिहाजा जल्दी से गुजरते हैं। अगरचे यहाँ अभी का मजमा जो है माह रमजान के मजमे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा इशारा करके कि असल इनकलाब का लफ्ज बना ही है कल्ब से, और कल्ब के माने रूह है, इंसान है, दिल भी ये इशारा कर दिया जाता है, चूंकि ये जिस्म का बहुत ही अहम ऑर्गन है, बहुत ही अहम पार्ट है, जिसके धड़कने ही से पूरे जिस्म में जो है ऑक्सीजन और खून सब पहुंच रहा होता है, तो बहुत सबसे ज्यादा अहम रोल अदा कर रहा होता है। इसलिए इतना बड़ा लफ्ज जो है इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, गलती से करते हैं, ये गलती से हम लोग कहते हैं कल्ब, मेरा दिल, मेरा कल्ब, लेकिन ये कल्ब नहीं है। हकीकी कल्ब वो रूह है, इंसान है, जिसके अंदर इनकलाब आता है। इसमें कुछ खास नहीं आता इनकलाब, इसमें जो इनकलाब आएगा ये पंप में, तो आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी खबरें सुन रहे हैं, कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन है, उसकी वजह से ये सीने में लगे हुए पंप में जो एक एक सेकंड में तकरीबन 72 बार जो है वो धड़कता है और खलिए खलिए तक, एक एक सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है खून के जरिए से और पूरे निजाम जिंदगी को जिंदा रखता है। लेकिन बहरहाल है ये पंप, लेकिन जो चीज रवायतों में और हदीसों में और कुरान में जहां पे कल्ब का लफ्ज बोला जाता है, तो उससे मुराद रूह है, इंसान है, और रूह है इंसान कहीं यहां पे दिल में नहीं है, ना इस दिल में है ना इस मग्ज में है, है ना। जब इंसान मरता है उसकी रूह वहां से निकल जाती है, तो मग्ज भी पूरा बाकी रहता है, बाद में सड़ना से रूह हो जाता है, लेकिन मरने के लम्हे में ये दिमाग भी रहता है, ये दिल भी रहता है, दिल रुक भी जाता है तो भी रहता है। रूह है इंसान, कोई मादी चीज नहीं है, लिहाजा उसको ये रब तो रखती है हमारे जिस्म से, हमारी रूह का हमारे जिस्म से रब्त है, लेकिन किसी जिस्म के हिस्से में नहीं है। मैं आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि असल चीज जो इंसान की है वो रूह है, जिसे हमने सबसे असली समझा हुआ है, इस वजह से कि जो रूह हमें दिखाई नहीं पड़ रही है और जिस्म ही दिखता है हमें 24 घंटे चलते फिरते खाते पीते, हमें अपना जिस्म दिखता है और आपका जिस्म दिखता है, दूसरों का जिस्म दिखता है,

हुई, कभी बगदाद में हुई, कभी ईरान में हुई, 8 या 9 जगहों पे यहां हिंदुस्तान में हुकूमत कायम हुई, लेकिन वो शियों की हुकूमत थी, वो शियत की हुकूमत नहीं थी। ये फर्क करना पड़ेगा। अब मुसलमानों की भी हुकूमत थी लेकिन इस्लाम की हुकूमत नहीं थी। उन मुसलमानों की हुकूमत के नतीजे में आज हमें जर्ब लग रही है, उनकी अपनी हुकूमत की वजह से आज मुसलमानों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, जबकि वो अपनी हुकूमत कर रहे थे, इस्लाम की हुकूमत नहीं कर रहे थे, इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। तो 9 जगहों पर इसी हिंदुस्तान में शियों की हुकूमत रही, अलग अलग जगहों पे, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जौनपुर में, लखनऊ में, बेजापुर में, मैसूर में, मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन ये सारी हुकूमतें थी, उसमें कुछ थोड़ा अच्छे भी लोग थे, थोड़ा कम अच्छे, थोड़ा ज्यादा अच्छे, कुछ और भी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जैसे भी थे वो सब के सब अपनी हुकूमत कर रहे थे। और अगर आपको कल का जुमला याद हो कि अपनी हुकूमत करना बहुत ही आसान है लेकिन इस्लाम के उसूलों की हुकूमत करना बहुत ही मुश्किल। अमीरुल मोमिनीन भी अपनी हुकूमत कर सकते थे। अमीरुल मोमिनीन का जुमला ही यह था कि लौलतुका, 2 जगह अलग अलग जुमला है। अगर दीन का मसला ना होता, अगर अल्लाह का खौफ नहीं होता, अगर अल्लाह के किए हुए अहद नहीं होता, तो मैं ये हाकिम शाम से कहीं ज्यादा अपनी हुकूमत को बढ़ा सकता था, कहीं ज्यादा होशियारी के साथ, कहीं ज्यादा चालाकी के साथ। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अपनी चालाकी के जरिए से बड़ी हुकूमत नहीं चाह रहे थे। अमीरुल मोमिनीन को छोटी हुकूमत चाहिए लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक चाहिए, उसूलों के मुताबिक चाहिए। और ये जुमला कह के ये समझना, इस जमाने में समझना बहुत जरूरी है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, रहबरे शहीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो अपनी हुकूमत नहीं कर रहे थे, इस्लाम के उसूलों की हुकूमत कर रहे थे। अब ये सारे उसूल पूरी दुनिया जानती है। एक जुमला मैं कहूं आपके सामने, फिर वापस पलटता हूं कि लोग ये समझते हैं कि ड्रोन्स की जंग जीत ली गई, मिसाइलों की जंग जीत ली गई, असलहों की जंग जीत ली गई, बड़ा अच्छा काम किया, तो वाकई अच्छा काम किया, तो ठीक है, वो जरूरी है, वो कुरान का हुक्म है, वाइदुलहुम मस्तातुम मिन कुवा, जितना मुमकिन हो सके ताकत इकट्ठा करो, हुक्म कुरान है, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन असलहों से कहीं ज्यादा अखलाकियात की जंग जीती गई, उसूलों की जंग जीती गई, समझ रहे हैं, असलहों से कहीं ज्यादा उसूलों की जंग जीती गई। और उसूलों की जंग के सामने जालिमीन को बार बार मजबूर होना पड़ा है। अभी आइंदा और भी बहुत मजबूर होंगे, अभी ये ना समझ ले कि डील हो गई सब कुछ, कुछ नहीं हुआ है अभी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा पेट्रोल ज्यादा बिक जा रहा है, अच्छा है, ठीक है, 5 दिनों में 18 मिलियन बैरल पेट्रोल ईरान ने बेच लिया, अच्छा खासा बेच लिया, और भी बिक जाएगा। लेकिन ये सब कोई अहम मसला नहीं है, मसला ये है कि उसूलों का गलबा हो और पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए कि यहां किसी कौम, किसी खानदान, किसी फर्द की हुकूमत नहीं है बल्कि उसूलों की हुकूमत है। फिर उसूलों की किसकी हुकूमत? अब यहां आप कनेक्ट करें करबला की सरजमीन से, यहां आके आप समझें कि उसूल किसके, उसूल हमारे नहीं। कभी कुछ लोग होते हैं अच्छे उसूल बनाते हैं, बहुत ही पाबंदी करते हैं, मैं तो उसूलों वाला आदमी हूं, उसूलों के मुताबिक नहीं, बेटे को भी नहीं मानूंगा, फला नहीं हो, नहीं। लेकिन बनाए किसने उसूल? खुद ही बनाए भाई, अच्छे भी बनाए हो तो खुद ही बनाए हैं। तो कितने भी अच्छे प्रिंसिपल्स आपने अपनी जिंदगी के लिए बनाए, लेकिन अगर अपने बनाए हुए हैं, अपने बनाए हुए हैं, तो बहरहाल कहीं ना कहीं अपनी ही बंदगी हो रही है। मस्जिद में आके कितनी भी नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन बंदगी तो अपनी कर रहे हैं। ये उसूल किसने बनाए? हमने खुद बनाए। बुरे बनाए? नहीं, बुरे नहीं बनाए, अच्छे ही बनाए। मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता इतना, लेकिन अजीजो, तारीख में हसरत थी, ये जुमला सुने और मैं मंजिल तक पहुंचूं, तारीख में हसरत थी, ये 14 सदियों की हसरत थी, जब गदीर को नहीं समझा गया तो उसके बाद हसरत ही रह गई। मुमकिन है आपने गदीर का जश्न मना लिया हो और खुश भी हो गए हो, इंशाल्लाह अल्लाह अजर भी अता फरमाए, लेकिन जब गदीर से दूरी अख्तियार की गई सिर्फ 2 महीने 10 दिन बाद, तो फिर पूरी तारीख में 14 सदियों में ये हसरत ही रह गई कि गदीरी निजाम की बुनियाद पर हुकूमत कायम हो और गदीरी निजाम की बुनियाद पर बातिल को शिकस्त दी जाए।
وہاں

और ये तो एक नुमाइंदा है, ये तो एक फकीह है, अभी तो असल मायूसी बाकी है। ये सब कुछ दर हकीकत उसी की तैयारी है कि जहां पूरे जहाने जुल्म को अदलो इंसाफ से भर दिया जाए। उम्मीद है इमाम मेहदी का तसव्वुर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अहले हक की सबसे बड़ी उम्मीद है इमाम जमान के तसव्वुर। ये फकत दुआएं नहीं है जो हम पढ़ के चले जाते हैं, सबसे

तालाब में खेमे में बैठी हुई ज़ैनब क्या सोच रही थी। मुसलसल दो मुहर्रम से लेके चार मुहर्रम से ले हम तो सिर्फ ज़बान से अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई तो खेमों में जाके बैठे, कोई हुसैन इब्ने अली की तन्हाई को देखे, और हमारा आपका देखना नहीं है, एक बहन ये देख रही है जिसने 20 साल पहले इसी कूफे में अपने बाबा की हुकूमत देखी थी। सबसे करीब शहर कूफा ही था जिसने बाबा की हुकूमत देखी थी, वो अपने भाई को इतना तन्हा देखे तो क्या सोच रही, कैसे गुजर रहा है लम्हे, कैसे गुजर रहे। हमें तो शायद सारी फिक्र ये हो कि प्यासे प्यासे है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन जनाब ज़ैनब को ये नहीं है कि पानी नहीं खाना नहीं, मेरे भैया का कोई नासिर नहीं है, मेरे भाई का कोई लश्कर नहीं है, मेरे भाई का कोई मददगार नहीं है, बीबी को ये फिक्र थी। लेकिन जब भी उन्हें मज़ाहिर आ गए तो दिल को राहत हो गई, हुसैन ने सीने से लगाया। मैंने देखा तो नहीं किताबों में, लेकिन चूंकि कोई मुश्किल नहीं इसलिए कह देता हूँ, सुनी ही बात है कि अंदर से भी जनाब ज़ैनब ने भी सलाम भेजा। हबीब आए हुए, हबीब अब वक्त इतना नहीं रहा अजीजो कि हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ सकूं, लेकिन इतना जान लें कि अमीरुल मोमिनीन के चार पांच सबसे ज्यादा करीबी सिपाहियों में हबीब इब्ने मज़ाहिर हुआ करते। जंग सिफीन में जहां पर कुछ कमजोरी महसूस होती थी तो वहां पर चंद लोग थे, उसमें एक हबीब इब्ने मज़ाहिर थे, अमीरुल मोमिनीन इसको उधर भेज देते, उस गिरोह को उधर भेजा, उधर देखो जंग में जमल में थे, सिफीन में थे, नहरवान में थे, हमेशा जंग करते थे। और चंद असहाब ऐसे जैसे रुशैद हिजरी, हबीब इब्ने मज़ाहिर की, जिन्होंने अपने पूरे वजूद को वक्फ कर दिया था कि मेरा आका जो भी चाहे जो भी चाहे। बास चीज़ें हमारे दरमियान में मसाइल में पढ़ी जाती हैं जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के शायान शान नहीं है, ज़्यादा मुमकिन है वही पढ़ा जाता है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप शायद इंतज़ार भी करें क्योंकि नहीं है, वो सही नहीं है, किसी मोतबर मख्तल में भी नहीं है, बाद के मकातिल में लिखी गई है और उसको लेके दादा चूंकि उस पर ज्यादा मुमकिन है किसी को रोना आए, लेकिन वो अहम मसला नहीं है। ये बहरहाल बहुत मुश्किल है कि जो लोग खुद गढ़ते हैं खुद बनाते हैं उस पर अपनी एहसास की चीजें होती हैं, इंसान को ज्यादा रोना आता है, लेकिन वो सब नहीं मसला है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जो इश्क हुसैन इब्ने अली में है और इश्क अमीरुल मोमिनीन में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था, राज बताए थे, अमीरुल मोमिनीन ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को भी वो राज नहीं बताए थे जो हबीब ने मज़ाहिर को और रुशैद हिजरी को और मीसम तम्मार को राज बताए थे, समझ रहे हैं, कारनामे अंजाम दिए थे। तो हबीब ने मज़ाहिर सात मुहर्रम को पहुंचे हैं और जैसे जैसे लम्हे गुजरने लगे तो करबला के मैदान में पहले एक एक बहन थी जो खेमे में बैठी हुई ये सोच रही थी कि मेरा भैया तो ना, अब दो लोग हो गए, एक हबीब ने मज़ाहिर भी आ गए जिन्होंने बचपन से हुसैन इब्ने अली को देखा था, बचपन के सारे लम्हों को देखा था, सिन में काफी फर्क था, बड़े थे, कम से कम 75 साल के थे या उससे भी ज्यादा बताया गया है, लेकिन बड़े ही अकीदत से, बड़े ही खलूस से, बहुत ही सच्ची नीयत से हुसैन इब्ने अली को देखा था। तो अब करबला के मैदान में एक शख्स और था जिसको बहुत ही एहसास था कि जहरा का लाल तन्हा है, अली का फर्जंद तन्हा है, रसूलुल्लाह का नवासा तन्हा है, वो जिसके लिए रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे उतर जाते थे गुफ्तगू के दरमियान में, हदीसें बयान करते हुए दर्स देते हुए मिंबर छोड़ के उतर जाते थे, फिर मिंबर पे अपने साथ लेके आते थे, फिर अपनी आगोश में बिठाते थे, आज वो हुसैन बहुत तन्हा है। तो हबीब ने मज़ाहिर को यही फिक्र परेशान कर रही थी, मैं तमाम करता हूँ दीदो। तो सात मुहर्रम से लेके नौ मुहर्रम तक ये देखते रहे, अब उधर खेमे में एक बीबी भी सोच रही थी कोई और भी आएगा, इधर बाहर लश्कर में हबीब ने मज़ाहिर भी ये देख रहे थे कोई और भी आता है, कूफे में तो और भी बहुत सारे लोग थे, बैत करने वाले बहुत सारे थे, तो कोई और भी आता, जब कोई नहीं आया तो नौ मुहर्रम के में शब आशूर में, शब आशूर के बहुत सारा माजरा है जो आप बहुत सारा सुनते भी हैं, शब आशूर में हबीब ने मज़ाहिर हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आए और कहा कि आका मुझे इजाज़त दे दें, मेरा कबीला यहाँ नज़दीक है, बनी असद कबीले से थे, हबीब ने मज़ाहिर असल में बनी

यसद कबीले से थे, बन यसद कबीला यमन का था, आए हुए थे। कूफे में भी कुछ लोग थे, लेकिन करबला की सरजमीन पे भी एक छोटा सा कबीला बन यसद के भी मौजूद था। कहा कि मेरे कबीले के लोग हैं, मैं इस कबीले के बुजुर्ग हूं, मैं जाके कहूंगा तो मेरी बात मानेंगे, आपकी ये तन्हाई मुझसे देखी नहीं जाती, मैं आपके लिए मददगार लाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए लश्कर लाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा कि नहीं आएंगे, लेकिन कहा कि आखिर मेरा कबीला हुज्जत तो तमाम कर दे जाके। इमाम ने इजाजत दे दी तो 9 मुहर्रम शब आशूर की इस तारीकी में हबीब ने मदाहिर किसी तरह से निकले और निकल के अपने कबीले तक गए और जाके अपने कबीले को इकट्ठा करके कहा, कुछ 90 लोग थे, 90-100 लोग थे, इतनी लोग इकट्ठा हुआ, छोटा कबीला था। कहा तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह का फर्जंद आया हुआ है? मालूम तो था उन्हें भी, जमीन उन्हीं से खरीदी थी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जुरात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, मारिफत नहीं थी, इमामत की इताअत नहीं थी, जज्बे शहादत नहीं था, इश्क शहादत नहीं था, लिहाजा वही होते हुए वो बैठे हुए थे। हबीब ने मदाहिर ने कहा सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं तुम्हें कोई लालच देने नहीं आया हूं, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कयामत में जब तुम्हारा रसूलुल्लाह से सामना होगा तो तुम क्या करोगे? रसूलुल्लाह से जब सामना होगा, फर्जंदे रसूलुल्लाह यहां पे है। तो यही सुन के उस लश्कर से तकरीबन वही 90 लोग निकले और निकलकर हुसैन इब्न अली के कारवान की तरफ बढ़े। लेकिन इधर उमर साद के जासूसों ने खबर दी, क्योंकि जासूस बहरहाल सब सो रहे थे रात में, लेकिन जासूस थे जिनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने खबर दी। उमर साद ने एक लश्कर भेजा और लश्कर जब रात में उसने हमला किया तो वो सब के सब बिखर गए। क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग किसी के कहने पे आते हैं, जो लोग खुद नहीं समझते हैं, वो देर तक ठहर नहीं सकते। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ तो वो रात के अंधेरे में इधर उधर बिखर गए और फिर बड़ी मायूसी के साथ हबीब ने मदाहिर किसी तरह से वापस पलटे, शर्मिंदगी के साथ कि मेरे आका मैंने कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। माजरत। बस अजीजो, हबीब ने मदाहिर के लिए बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं आखिरी जिंदे से पढ़ता हूँ कि जब हुसैन इब्ने नमीर ने मलून ने कहा हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, तो सब तो देखते रह गए कि ये क्या जुमला कह रहा है। जोहर आशूर का लम्हा था, इमाम नमाज पढ़ना चाह रहे थे, तो वो हबीब जिन्होंने बचपन से हुसैन इब्ने अली को देखा था, उन्होंने अपनी तलवार ली और उस पर मलून पे हमला किया, हमला किया, शदीद हमला किया, खुद भी जख्मी हुए और हबीब ने मदाहिर के सरोतन में जुदाई करने की कोशिश थी कि हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बचाया, फिर जंग की और उसके बाद जब शहादत की मंजिल आई तो एक जुमला मक्तल के सुरे मसायब तमाम। दो ही बार करबला में ये मंजर नजर आया, एक तो उस लम्हे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि जब भाई शहीद हुआ तो वहां पे इमाम ने खुद फरमाया कि अल आन इनकसरा जहरी, मेरी कमर टूट गई, इनकसरा जहरी, मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब हबीब ने मजाहिर की शहादत के लम्हा आया तो मक्तल में जुमला लिखा है फजहर अल इनकसार अला वजह हुसैन, ऐसा लगा कि जैसे हुसैन इब्ने अली के चेहरे के आसार बदल गए, जैसे चेहरा टूट सा गया हो, जैसे चेहरा बिखर गया हो। हबीब को खो देने के बाद जब हबीब 3 दिन पहले आए थे तो हुसैन का चेहरा खिल गया था, लेकिन अब हबीब को हुसैन इब्ने अली हमेशा के लिए खो रहे हैं तो चेहरे पे शिकस्तगी के आसार नमुदार हुए। ऐ हबीब तुम जाओ, हम भी तुम्हारे साथ आने को तैयार है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन यन्क़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अलिहि परवरदिगार हमारे सवाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, परवरदिगार हमें शहदाए करबला सैयद शहदा हुसैन इब्न अली की मारिफत और उनकी राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार हम सबको नासिरान इमाम ज़मान में करार दे, परवरदिगार कलमे हक़ को इज़्ज़त व सरबुलंदी अदा फरमा, कलमे बातिल को नीस नाबूद फरमा, उलमाए हक़ मराज़े किराम आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के नासिर।

0: अमीर, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कूफे से आया हूँ, मैं एक अहम खबर देना चाहता हूँ।
1: जाओ आगे से, आने दो से। चलो आ जाओ, आगे आओ।

0: बताओ क्या बात है, कहना क्या चाहते हो? कहाँ कुफी से आ रहे हो? क्या खबर है कुफी की, बताते क्यों नहीं?
1: अभी बताता हूँ। ला हुक्मा इल्ला लिल्ला वला नाबुदु इल्ला इय्या।
0: कहना क्या चाहते हो?
1: अभी बताता हूँ लो। अमीर पर हमला हो गया है।
2: रोमी तबीब कहाँ है? जाओ उसे जल्दी ले आओ। अंदर कैसे आ गया? निगेवान कहाँ है? यहाँ के निगेवान कहाँ चले गए? आओ तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। अमीर आप लेट जाइए, आग लाओ आग।
3: क्या जख्म ज्यादा गहरा है?
4: मामूली सी खराश है।
3: फिर आतश किस लिए?
4: एहतियात के तौर पर।
3: मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए।
4: नहीं नहीं होगा।
3: चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा।
5: वाह!
3: तुम्हें किसने खबर दे दी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों?
4: जी हाँ ऐसी है।
3: बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है।
1: क्या हो गया है?
3: कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ?
6: वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है।
3: क्या कहा, उसकी खातिर करोगे? वारे मेरे चचा साथ, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है, अब उसे इनाम देना ना भूलना मेरे चचाजाद। जरूर खवारिज से होगा, उसे किसने भेजा होगा?
2: अभी नहीं पूछा।
3: अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का?
1: अमीर की सलामती।
3: मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहाँ।
4: ख्याल रखिएगा अमीर।
3: तुमने तो कहा खराश है, उठा लो मेरे सर से अपना हाथ।
4: अमीर मैं खूनरेजी को रोकना चाहता हूँ।

0: Terzio. नहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर, जाओ बाहर।
1: हम आपके लिए परेशान हैं अमीर।
0: तुम भी जाओ।

0: प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफयान जिंदा सही और सालिम है, और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर, चलो बाहर जाओ। बोस जाओ, तुम भी जाओ, हालात पर कड़ी नजर रखो, सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो।
1: जैसे अमीर का हुक्म।
0: ए, तुम कहाँ? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचा साद, तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम जहाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज, तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो? अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली जर्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज।
2: जख्म जबान न लगाए अमीर, आपने खुद कहा था।
0: क्या कहा था?
2: यही कि उसको आगे आने दिया जाए।
3: हमने तो उसे रोक दिया था।
0: उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की, तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
4: क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं?
0: और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक दो खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाजे कर दूं?
2: नहीं, वाजे है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं।
0: रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाजे है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है।
3: मालूम है?
0: अच्छी तरह।
3: कौन है वो?
0: वही जिसने उस्मान को कत्ल किया।
2: लेकिन यह भी मालूम कहां?
0: बकवास करते हो, सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेजे पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूनखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो मुआविया मजरूह और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहर आलूद रहा हो और मुमकिन है कि मुआविया हालत इंतजार में हो।

0: Zindabon.
1: आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब, दरवाजा खोलो।
2: इताअत।
1: तशरीफ लाओ।
2: तुम भी आओ।
1: सीढ़ी नीचे करो।

0: हमें पहचानते हो?
1: हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। बल्कि जिसने भी जंगे सिफीन में शिरकत की है, वो मरवान और जहाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे।
0: तुम शहर में कब दाखिल हुए?
1: कल सुबह।
0: और कौन था तुम्हारे साथ?
1: मैं अकेला हूँ।
0: किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली?
1: अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है।
2: तो खवारिज से हो तुम, तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए?
1: अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है?
0: हकमेन ने।
1: सिर्फ खुदा का हुक्म काबिले कबूल है। हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता।
0: तुम अमीर के कुफर के बारे में मुतमईन हो?
1: हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ।
0: और अली के बारे में?
1: अली भी मौत के मुस्तहक हैं।
0: तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो?

0: आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें।
1: मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है।
0: मैं मानता हूं मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा।
1: थोड़ा सा काबू नहीं रखा था? तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया। तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार, आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर सजा है।
0: अब जब तुम रो रहे हो इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में। इसका मतलब है हम दो मर्दों की तरह गुफ्तगु कर सकते हैं। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो उमर, मैं आज रात तुम्हारे तमाम तर उन कत्ल गारत के जुर्म जो तुमने आज तक किए हैं तुम्हारी मौत का सामान कर दूं और तुम्हारा मलकुल मौत बन जाऊं। और यह भी कर सकता हूं कि हाकिम मदाइन के पास जाऊं और उसे कहूं कि तुमने इस काल कोठरी में अपने सियाह और परीद चेहरे के आईने में अपने आमाल को देखा है और इस्तग़फ़ार कर लिया है और अपने छोटे बड़े गुनाह का इकरार करके एक आसमानी मार्फत की तरफ बढ़ गए हो, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। अब मर्जी तुम्हारी है, क्या करूं?
1: सब्र करने वालों जैसा चेहरा बनाकर मत दिखाओ मुख्तार, मुझसे क्या चाहते हो?
0: किस नियत से सफेद महल आए हो और कैसे आए हो?
1: मेरे हाथ पांव खोलो ताकि आराम से बात कर सके।
0: तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर डाली गई है, जबान में नहीं।
1: अगर मैं बात ही ना करूं तो
0: मंसूर नालबंद के बेटे को तुम्हारे साथ यहाँ तनहा कैद कर दूंगा और गोरकन से कह दूंगा कि यहाँ एक हसीन सी कब्र बना दे, कैसा रहेगा?
1: ये मंसूर नालबंद कौन है?
0: मुल्ज़िम हमेशा भूल जाया करते हैं। आखिर तुमने इतने बेशुमार जुल्म किए हैं कि तुम्हें वाकई याद नहीं आना चाहिए। मंसूर नालबंद का बेटा उस अगवा शुदा मंसूर नालबंद की बेटी का भाई है जिस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सका तो तुम्हारे गंदम के अंबार को आग लगा दी। वो इस वक्त जमीनों को आग लगाने के जुर्म में जिंदान में पड़ा हुआ है, मगर उसके दिल का दाग अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है और खुदा खुदा करता है कि एक लम्हे के लिए उसे उम्र साथ की ज्यारत हो जाए।

0: मेरा ख्याल तुम समझ गए हो। मंसूर नालबंद का बेटा तुम्हें मार डालेगा और बड़े फखर और गुरूर के साथ तुम्हारे कत्ल को अपने सर पर ले लेगा, और पिसर सादे अबी वकास सरदार फातह ईरान का बेटा एक नामूस के इल्जाम में दार फानी को विदा कर देगा। और फातहा, बोलो क्या राय है तुम्हारी?
1: क्या चालाक इंसान हो। बहुत खूब, तुम जीत गए। मुआविया हक रखता है कि तुमसे और तुम्हारे चाचा से डरे। तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत उसका काम दुश्वार कर रही है।
0: यकीनन उसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम उसके दुश्वार काम को आसान करो।
1: ये एक अहमकाना तहमत है। मेरे कुछ इरादे थे, मगर मैं मुआविया का भेजा हुआ नहीं था।
0: नहीं, बज़ाहिर तुम्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती। तुम्हारा इकरार करना मेरे चाचा के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, जो एक पुराने सियासतदान हैं, मगर मेरे लिए सिर्फ वक्त जाया करने की बात है। बहुत मुनासिब मौका है मेरे लिए ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी मज़ाहमतकारियों से जान छूट जाए।
1: मैं मुआविया का भेजा हुआ था, सफेद महल में आया था ताकि अली के बेटे को कत्ल कर दूं। अब सही है, तुम्हें यही चाहिए था ना?
0: ये एक मुजहका खैज इकरार है कि तुम अकेले महल में आए हो ताकि अली के बेटे को, जो कि एक फौज के हिसार और हिफाजत में है, कत्ल कर दो। कोई पागल ही होगा जो इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला होगा।
1: खुदा की लानत हो शैतान पर।
0: शैतान पर क्यों? तुम पर, जिसने बेचारे शैतान के भी हाथ बांध दिए।
1: मुख्तार, मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के कल्ब यानी तुम्हें, यानी सरफिरे मुख्तार को राजी करूं, जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है। उसे समझाऊं कि अपना हाथ अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से ना जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार, मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही, मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया।
0: इस रिश्ते से तुम्हें क्या फायदा होगा?
1: बहुत सी चीजें, सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार, खुदा की कसम तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेतीबाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रखेगा। और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमान नामा ले सकता हूं।
0: मुंह बंद कर। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अकले कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी?
1: हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो।
2: कैसे काली रात है, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुन रही हूं। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त ना कर पाए और सारे राज खोल दे।
3: किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ
2: हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो।
3: कौन सी साजिश जारिया, क्यों इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। कुछ तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान है और मैं बेखबर हूँ?
2: हरगिज़ नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो।
3: इतनी परेशान क्यों हो?
2: तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो मुआविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है?
3: कबूल किया है तो फिर हमें इसे क्या?
2: किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की नारी?

0: मेरी प्यारी भाभी ने, मुख्तार की नाजनी बीवी ने, तुमने अपने गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की है।
1: मेरे दामन को गंदा मत करो आसिम की साहब, मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे, मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। अब कौन सी खाक उड़ाऊं।

0: वाकई ये तो हारून है, नालबंद का बेटा।
1: बहरूप जनाब हारून इब्ने मंसूर, आप पेसर साद को मारना चाहते थे ना?
2: जनाब वाला, आधी रात को मुझे जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदिल हुक्मरान है कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है, उसके लिए भेड़ और गाय दोनों बराबर हैं, किसी मजलूम का हक पामाल नहीं होता।
1: बिला मुबालगा, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने।
2: तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो?
1: अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुज़ाहमत का सबब जान जाओगे।
2: मैं उमर साद को मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा, उसकी औकात दो कोड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सजा में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए।
1: शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए।
2: कसम से,
1: शायद। दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना।
3: मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो।
1: क्या फरमाया आपने?
3: दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी, मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था।

0: क्या कायल हो गए या मजीद दलीलों सबूत चाहिए?
1: ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बगैरत और नामर शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब भिंते साथ, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुरखाब के पर नजर नहीं आ रहे। रकासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमा पूरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया की आस्थाने पर भौंको।
0: बकौल तुम्हारे, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे।
1: जारिया मेरे लिए मर चुकी है।
0: जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखें तोड़कर परवास कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार करूं।
1: ऐसे खाम ख्याली में रहो।
0: अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है।
1: तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं।
0: हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दो फादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की तस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है। लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं, और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तरे बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआख्जा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हमअकीदा हो।
1: अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो।
0: मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूँ। किताब खाना और जंग की मश भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों?
1: क्योंकि तुम्हारी नाखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने।
0: तुम्हारा गुरूर और जाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरजुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे।
1: इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूं।
0: कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम अज कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार अबू बेद सखफी के बेटे फातिहा।
2: उसने दरवाजे को लात नहीं मारी।
3: तुमने देखा ना आरिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफल लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है।
2: मुख्तार।
1: हाँ।
2: खाना नहीं खाओगे?
1: रात को तुम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खा।
2: क्या तुम जारिया से नाराज हो?
1: जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है।
2: जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार।
1: नारिया, अब मैं हरगिज उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। जरबी कहां है?
2: मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा।
1: उसे जगा दो, मैं थका हुआ हूं, कुछ मालिश करवाना चाहता हूं।

0: बस दो आंखें जनाबे मुख्तार, मुझे क्या करना होगा?
1: यूं समझिए कि इस महल के अशराते अर्ज भी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें।
0: यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है?
1: अफसोस है कि हाँ।

0: अरे से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चाचा के हाथों से लें।
1: यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है।
0: अफसोस है कि हाँ, कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है, मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दानगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हों, उसका नाम उमर इब्ने साद अबी वकास है।
1: उमर इब्ने साद अबी वकास?
0: हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा।
1: दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफ ज़दा कर दिया है। मुख्तार, इमाम हसन के पास सिवाय औदाए खिलाफत माविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा।
0: अब आप क्या करना चाहेंगी बानो?
1: मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया कुफारे कुरैश से बदतर तो नहीं। रसूल अल्लाह का कुफारे कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाजा है।
0: मैं मुआतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानो। ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बायस शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। एक दो दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए।
1: उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरजुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। माविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवासे पर तलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं।

0: ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम आवाज चाहो, और आप दोनों जल्द से जल्द इराक अजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इतला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहल वयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो।
1: और पहलवान कियान खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्करे साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना, कहीं खुदा न खास्ता किसी का हक जाये ना हो जाए। पुरमसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं।
0: कहां गुम हो कियान?
2: अबू इसहाक, बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजूना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है।
0: जाओ कियान, अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मजीद पुख्ता हो गया है।
2: मैं चलता हूं।

0: 짜자잔. 한 바지 하주게.
1: 그게 무슨 바지 하주게 해놓으리 나서.
0: मतलब यह कि बानू ज्यादा भी उम्र साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब यह कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें। यानी यह कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब जाते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा के लिए जितनी तादाद में है और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां।
1: तुम पागल हो गए हो मुख्तार, हवा और हवस की सद में आ गए हो। बानू ज्यादा जादू करती या हमारे साथ चचा की जान। वो लोग जो बद्र ओहद और खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे उनकी तादाद हीलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3-1 के हिसाब से थे।
0: हाँ 3-1 के हिसाब से थे मगर थे है नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है और आप
1: शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार।
0: चाचा जान हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसारे पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए।
1: नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटी से सुन रहा हूं जिसका बाप हौसले शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस अफसोस अफसोस। बखुदा कसम ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार। तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा। सुरखरू कर देगा।
0: चाचा जान खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल ना हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो हरगिज अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा।
1: कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाह तो इस बारे गिरा को मैं अकेला अर्श तक ले जाऊंगा।

0: बानू ज्यादा को देखा मुख्तार, क्या बातें हुई चचा की जान, बताओ मैं सुनने के लिए बेताब हूँ।
1: मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और जरात पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी।

0: तुम कब तक दांत कसे रहो? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे?
1: खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया।
0: खतरा हम सबको था पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है नादान।
1: इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले।
0: आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं।
1: ये बात अली के मुरीदों की है।
0: मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज़।

0: आ गए आजाद लड़ाका सिपाही।
1: सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार, मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई।
0: तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं।
1: खुदा की कसम मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलानामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का।
0: बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है, गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया, अपने एहसास की लगाम में सरकिश को खींच।

0: आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था।
1: शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार, हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे।
0: तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कजा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क को फजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब आवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को नियाम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।

0: क्या तुम्हारी कश्तियां डूब गई हैं मेरी जान?
1: मुख्तार से फिक्रमंद हूँ खाला।
0: क्यों? मुख्तार तो बिल्कुल सरे तस्लीम खम कर चुका है।
1: अभी तक उमर से हाथ नहीं मिलाया उसने।
0: अगर हाथ ना मिलाया होता तो इस शादी के लिए रजामंद ना होता।
1: वो मजबूर हुआ है खाला जान। मेरी और नारिया की चालाकियां उसकी रजामंदी का सबब बनी। दर हकीकत वो उमर से नाराज है। वो चाहता है कि उसके तन पर सर ना हो।
0: निकाह का खुतबा हो जाने दो, उमर और मुख्तार एक हो जाएंगे, कीने दिलों से खत्म हो जाएंगे। मुंह लटकाने के बजाय आंखों में खुमार पैदा करो ताकि उमर का दिल लुभा सको।
1: मैं डरती हूँ कि मुख्तार का गुरूर जख्मी ना हो जाए खाला। अगर मुख्तार के गुरूर को खराश भी आई तो हमें छोड़ेगा नहीं।
0: मुख्तार उस वक्त खतरनाक है जब उसके हाथ में तलवार हो। वो मुख्तार जिसके हाथ में बेलचा है वो चींटी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है।
1: काश खुदा आपकी सुन ले खाला।

एक दूसरों दूसरे को अपना दुश्मन बनाते हैं, समझते हैं और जानते हैं, है या नहीं? देख लीजिए फैमिलीज के अंदर, कौम के अंदर, माँ बाप औलाद को दुश्मन समझते हैं, औलाद माँ बाप को दुश्मन समझते हैं, भाई भाई से दुश्मनी करते हैं, भाई बहन की दुश्मनी होती है, सास बहू का झगड़ा होता है या नहीं? ससुर का कभी नहीं होता, सास बहू का होता है जी, झगड़ा होता है। और कौम के अंदर आकर देखें तो आपस में मोमिनीन भी लड़ते हैं, हाँ नमाज जमात में साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के पहलू में खड़े होते हैं, मजलिसों में आते हैं तो एक दूसरे के पहलू में बैठते हैं, हाँ तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, कुरान कह रहा है देखने में ये एक नज़र आते हैं, दिल इनका मुतफर्रिक है या नहीं? खुदावंद आलम हमें ये कह रहा है, इस्लाम हमें ये बता रहा है कि ये सब जो हैं जिनको तुम दुश्मन समझते हो, ये दरअसल तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हकीकत में तुम्हारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं इस ज़िंदगी के अंदर, जिनके बिना पर तुम ये सारे धंधे करते हो। वो दो दुश्मन कौन है? एक तुम्हारी अपनी गफलत है, हीडलेसनेस है कि जिस पर गुफ्तगू चल रही है, और तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। इस ज़िंदगी के अंदर हर बंदा, हर इंसान अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को बखूबी जानता है, और ये भी जानता है कि दोस्तों के साथ किस तरह बर्ताव और सुलूक किया जाता है, दुश्मनों के साथ कैसे बर्ताव और सुलूक किया जाता है। लिहाजा जब दोस्तों के दरमियान में होता है तो बेफिक्र रहता है, दुश्मनों के पास रहता है तो होशियार और ख़बरदार रहता है। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र इब्ने मोहम्मद अस-सादिक़ सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि फरमाते हैं कि इनकान शैतानु अदुवन फलगफलतु लिमादा, अगर शैतान वाकई में तुम्हारा दुश्मन है, यानी तुम उसे दुश्मन समझते हो, उसे दुश्मन मानते हो, तो फिर ये गफलत काहे की है इस दुनिया के अंदर? क्यों तुम गाफिल हो शैतान से और उसके करतूतों से, उसके कारनामों से, कि जो तुम्हें अल्लाह से गाफिल करता है तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल करता है। कुरान मजीद के अंदर शैतान का जिक्र बारहा आया है, बहुत सी आयतें हैं कुरान के अंदर कि जहाँ खुदावंद आलम ने शैतान का जिक्र किया। और वो सूरा जो हम अक्सर पढ़ा करते हैं, मशहूर सूरा सूरा यासीन, कब्रिस्तान जाते हैं तो उसकी तिलावत करते हैं, मजलिसों में तिलावत करते हैं, घरों में तिलावत करते हैं, मौत होती है उसमें भी तिलावत करते हैं, मरहूमों के इसाले सवाब के लिए इस सूरे की तिलावत करते हैं। इसी सूरे के अखीर में आप देखेंगे कि खुदा बंदे आलम जो है हमें होशियार और ख़बरदार कर रहा है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, क्या मैंने तुम्हारे साथ ये अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश नहीं करोगे, उसकी इबादत नहीं करोगे, मतलब ये कि उसके बहकावे में तुम नहीं आओगे, और तुम मेरी परस्तिश करोगे, मेरी इबादत करोगे। क्यों? हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, क्योंकि यही सीधा रास्ता है। और फिर उसके फौरन बाद खुदा हमें ये कह रहा है वलकद अवल मिनकुम जिबलन कफीरन अफलम तकूनू तअक्लून, ये शैतान वो है कि जो तुमसे पहले कई लोगों को गुमराह किया है, हाँ गफलत में रखा है, क्या तुम अकल नहीं रखते, इस बात पर गौर व फिक्र नहीं करते? तो देखा आपने इस आयत में हमें बताया गया है साफ अल्फाजों में कि ये हमारा खुला हुआ दुश्मन है, तो अब इसके साथ हम किस तरह बर्ताव करें? हाँ वो बर्ताव जो आपस में हम एक दूसरे के साथ जिंदगानी दुनिया में करते हैं, खुदा कहता है कि इन्हें छोड़ दो, ये बर्ताव और सुलूक तुम शैतान के साथ करो। इन शैतान लकुम अदुवुन, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुदा कह रहा है। तो अब हम क्या करें? फत्तखिज़ूहु अदुवा, तो फिर तुम भी उसे अपना दुश्मन मानो, उसे अपना दुश्मन समझो, और उसके साथ जो है दुश्मन वाला सुलूक करो। तो कुरान मजीद के अंदर हमें बारहा ये बताया गया है, हमारे रब के छठे इमाम इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद अस-सादिक़ सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह फरमाते हैं कि लकद नस

का मौका था, आया था, लेकिन देर से पहुंचा, तो मैं अपनी जगह पर जाके नहीं बैठ सका। लोगों की भीड़ थी, माशाल्लाह लोग दूर दूर से आए हुए थे, तो वहीं दरवाजे के पास कुछ मोमिनीन बैठे हुए, तो उन्होंने देखा, कहा सरकार आप हमारे बाजू में आके बैठें, तो मैं उनके दरमियान में बैठ गया। अब मेरे पहलू में एक शख्स बैठा हुआ था, उसके पहलू में एक शख्स बैठा हुआ था, मजलिस जारी थी, मौलाना मिंबर पर बैठे हुए थे और हम लोग सुन रहे थे। पहलू में जो शख्स बैठा हुआ था वो उठा बैतुल खला में जाने के लिए, वो जैसे उठा और यहाँ से गुजरा है तो उसके पहलू में बैठने वाला गिरा, और ऐसे जोर से गिरा कि अतराफ में जो सब बैठे एक मतलब सब चौंक गए और घबरा गए। मैं तो समझा ये गया, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हुआ ये कि वो फौरन बैठ गए, यानी ये मौजिज़ा हुआ। फौरन बैठ गया, शक्ल देखे तो बेचारा शर्मिंदा था। मैंने उसको मजलिस के बाद ये सवाल किया, मैंने कहा कि भाई हुआ क्या, तो उसने कहा कि आपके पहलू में जो शख्स बैठा हुआ था दरअसल मैं उसी को टेक के सो रहा था और ये उठा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम से, तो मैंने किसी से सवाल भी किया, कहा पूछा कि भाई आप जब मजलिस में आते हैं तो क्या आपको हमारी मजलिस से पसंद नहीं आती है, क्या आप सो जाते हैं? उन्होंने कहा दरअसल ये बात नहीं है, मजलिस चाहे कोई भी पढ़े, कोई भी, इसने ये कहा मुझसे कि आगा भी अगर नजर से आके पढ़े तब भी हम सोएंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहा दिन भर से सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, शाम को थक जाते हैं, तो आते हैं यहाँ पर और हमें नींद अच्छी आती है, सो जाते हैं। तो मैंने कहा घर पर क्यों जाके नहीं सोते? कहा घर पर अगर गए जल्दी तो बीवी कहेंगी कि घर में अंडे नहीं है, बटर नहीं है, ये नहीं है, जाएं आप टेस्को में या हज में, यहाँ मौलवी हजरात हमसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आराम से सो सकते हैं। तो ये है दूसरा किस्म उन लोगों का कि जो एकदम से सो जाते हैं। तीसरा किस्म उन लोगों का होता है कि जो एक कान से सुनते हैं एक कान को बंद रखते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं ऑडियंस के अंदर। एक जगह पर मजलिस में मैं इसी शैतान का जिक्र कर रहा था और मैंने नाम लिया, मैंने कहा कि उसका नाम अजाज़ील था। तो मजलिस के बाद एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा कि सरकार आपने मजलिस में जो है एक नाम लिया था, मुझे याद नहीं आता। मैंने कहा कि मजलिस तुम पढ़ते, एक घंटे की मजलिस होती है, कितने नाम हम ले लेते हैं मेंबर से। मैंने कहा किस नाम का जिक्र कर, कहा कुछ अजा अजा अजा कुछ सब समझ गया। मैंने कहा आप अजाज़ील की बात कर रहे हैं कि क्या? बिल्कुल वही नाम। उसने कहा कि आपको पता है मेरी बहू हामिला है, अगर लड़का पैदा होगा मैं चाहता था ऐसा नाम दो कि किसी ने ऐसा नाम ना रखा हो, और ये नाम बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा चाचा आप समझे मेरी मजलिस, जाग रहे थे? कहा क्यों? मैंने कहा यह शैतान का नाम है, अजाज़ील जो है ये शैतान का नाम है। तो ये बताया गया हमें कि शैतान, शैतान दरअसल अरबी में लफ्ज़ शतना से निकाला गया है कि जिसका मतलब होता है शरारती, यानी शरारत करने वाला, मिस्चिफ मोंगर। इसीलिए जब छोटा बच्चा जो है मस्ती करता होता है तो हम कहते हैं ये शैतान है या नहीं, या कौम के अंदर कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जिनका काम ही शरारत करना होता है या नहीं, तो हम कहते हैं कि ये जो है शयातीनुल कौम है, कौम के शैतान लोग हैं। वरना इस शैतान का जो नाम है असल नाम अजाज़ील बताया गया, ये एक जमाने में मलाइका के सुफूफ में था और अल्लाह का बड़ा इबादत गुजार था, बल्कि इबादत में उसकी शोहरत थी और उसकी इज्जत थी मलकूत में, और फिर उसके बाद उसे जन्नत से निकाला गया, उसे मलकूत से बाहर फेंका गया। और किस लिए फेंका गया? दो वजहों के बिना पर, और दोनों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया। एक तो उसने अल्लाह की मासियत की, अल्लाह की ना फरमानी की, यानी जैसे खुदा ने हुक्म दिया था वैसे उसने नहीं किया, ये है ना फरमानी। इबलीस खुदा कह रहा है दूसरे मकाम पर कि जब हमने मलाइका को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने सजदा करे तो सजदा किए इल्ला इबलीस, और फिर खुदा कह रहा है लम यकुन मिन साजिदीन, ये सजदा करने वालों में से नहीं था, यानी इसने खुदा की नाफरमानी की। तो ये है एक सबब, और दूसरा सबब जो कुरान के अंदर आया है वो तकब्बुर का है। एक और मकाम पे अंदाज आप देखें आयत की,
خداوند عالم کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ان کو

0: भेजा, लेकिन उसे वापस लौटने में ताखीर हुई, देर हुई, तो सुलेमान खफा हो गए। कुरान कह रहा है ये कि सुलेमान ने कहा कि हुदहुद कहा है, क्यों अभी तक नजर नहीं आया। अब अगर उसके पास उजर नहीं, एक्सक्यूज नहीं, तो मैं उसे या तो अजाब दूंगा या तो उसे जबह कर दूंगा। ये सुलेमान ने कहा, कुरान की आयत है। हुदहुद पहुंचा, आया और उसने कहा, सुलेमान तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। पूछा, कौन सी खबर? कहा, मैं सबा को गया था, जगह का नाम है, और मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा। एक औरत है कि जो मर्दों पर हुकूमत करती है, लोगों पर हुकूमत करती है, और उसका एक बड़ा तख्त है कि जिस पर वो बैठती है। लेकिन सुलेमान, साथ साथ मैंने ये भी देखा कि ये औरत जो रानी है उनकी और उसके जो लोग हैं, ये लोग अल्लाह की परस्तिश नहीं करते बल्कि सूरज की परस्तिश करते हैं। दे आर वर्शिपिंग द सन। और फिर उसके बाद हुदहुद ने जो कहा, ये कुरान मजीद के अंदर आया, व ज़य्यन लहुम शैतान अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबील। शैतान ने उनके लिए उनकी बुराइयों को अच्छी तरह से सजा रखा है, यानी इस तरह के अब वो बुराइयों को बुराइयां नहीं बल्कि नेकियां समझ के अंजाम देते हैं। तो ये उसका एक चाल है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है कि बनी नौ इंसान पर जब वार करता है। और आज कल के इस जमाने के अंदर आप देखिए कि किस तरह बुराइयां फैल चुकी है, है या नहीं? लेकिन अब ये बुराइयां जो है, बुराइयां नजर नहीं आती हमें बल्कि अच्छाइयां नजर आती। जो इन बुराइयों में मुब्तिला नहीं होता, हम समझते हैं ये बैकवर्ड है, पीछे रह गए हैं, हम आगे निकल गए हैं। हाँ, करते हैं बुराइयां, मिसाल के तौर पर छोटी छोटी मिसालियां, इंशाल्लाह लोगों को इससे फायदा भी हो। आजकल एक देखा, बुराइयां, कुछ बुराइयां ऐसे हैं जो फैशन के नाम से निकले हैं, है या नहीं? फैशन, हाँ। अब आजकल के जवान की क्या बात करूं, बोले बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो फैशन के शौकीन हैं, है या नहीं? मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि प्रिजन के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जो पंटलून पहनाया जाता है या पैजामा दिया जाता है, उनमें उसमें नारे नहीं होते और बेल्स नहीं होते, लिहाजा जब वो घूमते फिरते होते हैं प्रिजन्स के अंदर तो उनके पंटलून गिर जाते हैं, है या नहीं? अब यही लोग जब जिंदान से निकले हैं, अब बेल्ट पहनने की आदत नहीं, ना नारे लगाने की आदत, हाँ, बाहर निकले, रास्ते से गुजर रहे हैं, लोगों ने देखा पंटलून गिर रहा है, रफ्ता रफ्ता फैशन बन गया, हाँ, फैशन बना के नहीं। आजकल के जवानों को आप देखो पंटलून जो पहनते हैं, पता नहीं आपके दारुसलाम में है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ खुदा बचाए वल्लाह, हाँ, आप मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ने को, नमाज जुमा के अंदर, हाँ, या जमात की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के लिए कहा गया है कि तवज्जो के साथ तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारे तसव्वुर में कोई ना हो, खुदा हो। और एक बंदा आपके आगे खड़ा है, अब जो रुकू में जा रहा है तो पीछे से वाबैला है या नहीं? और ये कह रहा है भाई नमाज के अंदर ये सितरुल औरतैन, हाँ, वाजिब है, कवर योर फ्रंट एंड कवर योर बैक, वाजिब है, लेकिन ये बंदा कर रहा है, पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, शायद यूनिवर्सिटी से भी निकल चुका है, काम कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है। आप देखे बज़ाहिर जो हमारे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है, पंटलून ऐसी पहन रहा है जो पीछे से गिर रहा है, या अब जो नई फैशन निकली है बाजार में वो जो जीन्स पहनते हैं फटे हुए, हाँ, जो आम जीन्स से ज्यादा कीमती है। किसी ने मुझसे कहा कि मैं तो ऑर्डिनरी जीन्स लेता हूँ, फिर घर पे जाके फाड़ता हूँ, किसको पता चलेगा? सच बात है या नहीं है? हंसने की बात है लेकिन हकीकत है या नहीं? और ये करने वाले बच्चे नहीं है, ये बड़े बड़े लोग हैं, और सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी हैं, और सिर्फ बाहर वाले नहीं करते, हमारे वाले भी करते हैं, है या नहीं? सच बात है या नहीं? फैशन के नाम से है बुराई, हाँ। यही आप 20 साल पहले 40 साल पहले करते कौम के अंदर तो पता चलता है या नहीं? भाई मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि हमारी जो कौम है, हम तीन मरहलों से गुजरे हैं। एक पहला जो था मरहला हमारा, वो था रिजेक्शन ऑफ वॉइसेस का मरहला। उस जमाने में कौम के अंदर हमारे जो आबाओ अजदाद थे
1: برائیاں آنے نہیں دیتے تھے قوم کے لیول پہ, کمیونٹی

लेवल पे है। हाँ, मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर खुदा उन पर रहम करे, होने नहीं देते थे। भाई आज जो सब कुछ हो रहा है, उस जमाने में सोचना तक महाल था। तलाकें मिसाल के तौर पर कितनी तलाकें हो रही है कि नहीं हो रही, कितने केसेस है दुनिया भर के अंदर। जो मगरिब में लोग करते हैं हमें करना है, हा? और छोटी छोटी बातों पर टॉलरेंस नहीं है, और इंटरफियरेंस माँ बाप का, और जुल्म, और ये वगैरह, और तलाकें केसेस आ गई कौम के अंदर। उस जमाने में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, है या नहीं? भाई शादी हो गई, अब रहना है जैसे भी है, लेकिन रहना है। हाँ, था या नहीं उस जमाने में? रिजेक्शन ऑफ वॉइसेस, क्या कोई ये गवारा करता कि कौम के अंदर आके ऐसी ऐसे ऐसे ऐसे कपड़े में आए कि जो सही नहीं, मुनासिब नहीं मस्जिद या इमाम बारगाह के लिए? नहीं, खबरदार, जो बुजुर्ग बैठे थे भेज देते कि घर जाओ और जाके। उस जमाने में तो अगर टोपी पहन के तुम नमाज के लिए ना आते तो तुम्हें भेज दिया जाता था। सही है, बुजुर्ग बैठे हैं, यहां तो एक मरहला गुजरा है, वो था रिजेक्शन ऑफ वॉइसेस का। फिर आया टॉलरेंस ऑफ वॉइसेस का मरहला, रिजेक्शन के बाद टॉलरेंस के। अब कुछ कुछ टॉलरेट करने लगे, खास तौर से जब कौम के वो अफराद बुराइयां लाने लगे कौम के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल थे, चूंकि उन्होंने एहसान किया था कुछ लोगों के ऊपर, उनको देख के जुबानें बंद हो गई। अमीरुल मोमिनीन का कौल है कि अगर तुम किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो उस पर एहसान पहसान करो, अगर तुम कुछ करोगे बुराई तो इनकी जबान नहीं खुलेगी तुम्हारे सामने। होने लगी या नहीं? अब टॉलरेट, ये सखी है, ये इन्फ्लुएंशियल है, इनका मिनिस्टर्स के साथ सरोकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और टॉलरेट करने लगे। ये टॉलरेट करते करते आज एक्सेप्शन और एडेप्शन ऑफ वाइसेस के मरहले पर पहुंच गए। यानी आज बुराइयां कौम के अंदर नॉर्म बन चुकी है, बुराइयां नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को अब जो है शर्म ही नहीं है, यानी अल्लाह की मुखालिफत अलल ऐलान करते हैं, अलल ऐलान करते हैं, नहीं करते? शादी के मौके पर देख लीजिए, और एक से बढ़कर मैं जानता हूं कई लोगों ने मुझसे पहले यह कहा है, मेरे कहने से भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, अगर एक शख्स के दिमाग में मेरी बात आ जाए तो मेरी भलाई हो जाएगी। हो रहा है या नहीं? ये मिक्स गैदरिंग, ये नाच गाना, और अभी तो इससे भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा सुलूक अपनी खुद की बीवियों के साथ, पब्लिक के अंदर, जो चार दीवारों के अंदर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉडेस्टी, हम बाहर निकल रहे हैं और बोलने वाले कौन है? बैकवर्ड पीपल। तरक्की तो ये लोग किए हैं, ये उनकी तरक्की है, बुराइयां जिनको एडेप्ट किया गया। खुदा हमें ऐसे मुआशरे से बचाए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं हमें, और कहाँ से मार खाने वाले हैं ये भी पता नहीं है हमें। तो ये एक तरीका है शैतान का कि वो हमारी बुराइयों को जीनत देकर हमारे सामने, अब बुराइयां नजर नहीं आती, बल्कि हम ये समझते हैं कि यू नो दिस इज वी आर विद द टाइम। बाकायदा मुझसे कहा गया है, मैं कल जिक्र किया था मजलिस के अंदर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, और कौम के बुजुर्ग लोग हैं आजकल वेस्ट के अंदर, वो हैव बिकम मोर वेस्टर्न देन द वेस्टर्न पीपल, हाँ, और हमसे कहते हैं कि ना अब जमाना बदल गया, वो जमाना और था, इस्लाम एडेप्ट्स टू एवरी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो हमें भी चेंज होना चाहिए। हो रहा है या नहीं? तो ये एक तरीका है शैतान का। दूसरा तरीका ये है कि वो अपने हमारे दिलों पर वार करता है, दिलों पर, हार्ट्स के ऊपर, ये उसका फेवरेट स्पोर्ट है, याद रखिएगा, हार्ट्स, इस पर वो वार करता है। इसीलिए हदीसों के अंदर हमें कहा गया कि इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये दिल जो है सिर्फ जिस्मों को जिंदा नहीं रखता, सिर्फ जिस्म को जिंदा नहीं रखता, लेकिन हमारी रूह पर भी उसका असर रहता है। ये हार्ट, यानी मतलब उसका ये कि ये दिल अगर बिगड़ जाए तो अकीदा भी बिगड़ सकता है, दिल अगर बिगड़ जाए तो इंसान की अखलाक और रवैया भी जो है बिगड़ सकती है या नहीं? इसीलिए हमें कहा गया है कि तुम इस दिल का ख्याल रखो। कैसे ख्याल रखे? साफ रखो, उसमें खुदा को बसाओ, ये हमें बताया गया। देखो एक रिवायत है, और ये रिवायत जो है हमारी किताब में नहीं है, लेकिन खूबसूरत रिवायत है और माकूल रिवायत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ।

वहां भी हाफिज कुरान, यहां नमाज शब पढ़ने वाले वहां नमाज शब पढ़ने वाले, यहां रोजेदार वहां फर्क क्या था? इतना सा कि एक तरफ वो थे कि जिनके दिलों में खुदा बसा हुआ था, दूसरे वो थे कि जिनके दिलों में शैतान बसा हुआ था। यही तो फर्क था। आजादारों, 36 तारीख है माह मुहर्रम की, और आज तस्करा उन दो साहिबजादों का होगा जो अली मुर्तजा के पोते और जाफर के नवासे, जनाब सानिये जहरा के लाडले औन और देखें। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? सबसे बड़ी मुसीबत मेरे दोस्तों औलाद को खो देने का है। खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे, और जो लोग अपनी औलाद को खो दिए हैं खुदा उनको सब्र अता करे, और वो उनके सब्र के बिना पर कयामत के दिन उन्हें अजर अजीम अता करे। आजादारों, औलाद को खो देना ये मामूली बात नहीं है। सलाम है करबला की सैदानियों पर, सलाम है करबला की बीबियों पर, अपनी औलाद को करबला लेकर आई इस मकसद के साथ, इस इरादे के साथ कि हम अपनी औलाद को इमाम पर कुर्बान कर देंगे। रिवायतों में हमें मिलता है कि जिस वक्त मौला मदीने से रवाना होने लगे, जनाब सानिये जहरा अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर के घर आई अपने माजाए के साथ जाने की इजाजत मांगने के लिए। यहाँ पर हमें दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत में है कि जब शहजादी आई है तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने इन दो बच्चों को शहजादी के सुपुर्द किया, कहा शहजादी इन दो बच्चों को अपने साथ ले जाओ, खुदा न करे अगर हुसैन पर बुरा वक्त आ गए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर लेना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर लेना। और दूसरी रिवायत में है कि मौला जब 8वीं जुलहिज्जा को मक्के मुअज्जमा से रवाना हुए हैं और इराक की तरफ चले हैं तो कई मंजिल तय करने के बाद एक मंजिल पर जनाब अबुल फजल अब्बास मौला की खिदमत में आए, कहा मेरे आका, मेरे मौला, अगर हो सके तो हमारे इस काफिले को ज़रा रोक दिया जाए। मौला ने पूछा भैया अब्बास बात क्या है? कहा मेरे आका, मेरे मौला, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। आजादारों, ये काफिला रुका, कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला बिन जाफर आ रहे हैं, यानी कि जनाब सानिये जहरा के शौहर। आलम यह है कि एक दम से बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आँखों से अच्छी तरह से नहीं देख पाते, लेकिन एक हाथ को पकड़े आउन है, दूसरे हाथ को पकड़े मोहम्मद है। आए मौला की खिदमत में, बैठे मौला के साथ, कुछ देर तक मौला के साथ गुफ्तगू रही। मौला ने पूछा अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहा फरजंदे रसूल, मैं अपनी जौजा जनाब सानिये जहरा से बातें करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। मौला ने कहा बिल्कुल तुम्हारा हक है, तुम शौहर हो। ये कहकर मौला ने जनाब ज़ैनब को बुलाया, बहन को बुलाया, कहा बहन ज़ैनब अब्दुल्ला आए हैं। रिवायतों में मिलता है कि शहजादी ज़ैनब को जब ये खबर हुई कि अब्दुल्ला बिन जाफर आए हैं तो एक मरतबा खबर आ गई, ये समझी कि अब्दुल्ला लेने के लिए आए हैं। आई और जब अपने शौहर को देखा, पूछा यबना लाम, ए मेरे चचा के बेटे, ज़रा ये तो बताओ कि कैसे आना हुआ है? और साथ साथ शहजादी ने यह भी बता दिया कि देखो अगर मुझे लेने के लिए आए हो तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि तुम्हारी इताअत मुझ पर वाजिब है, लेकिन ए अब्दुल्लाह याद रखना ज़ैनब यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाए। अब्दुल्ला ने अपने हाथों को

आज 8 की शब है, 7वां दिन था, 2 दिन और है। रज़ाने मोहतरम अयाम अज़ा है, चलते रहेंगे हम, रहे ना रहे ये मजलिस होती रहेगी, ये पैगाम नस्ल दर नस्ल एक ज़बान से दूसरी ज़बान, एक कौम से दूसरी ज़बान जाता रहेगा, क्योंकि खुदा ने खुद इस पैगाम की हिफाजत की है। जो शख्स अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दे, खुदा कुरान में भी इरशाद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इमाम ने रोज़े आशूर खुदा का ऐसा जिक्र किया कि कयामत तक पूरी कायनात में हुसैन हुसैन हो रहा है। अब ये हम इस बात को समझना है कि ये वाकया किसी एक खास मसलक से ताल्लुक नहीं रखता, ये सबके लिए, ये पैगाम इंसानियत का पैगाम, इसीलिए इसको इतने स्ट्रेटजिकल तरीके से सैयदुश्शहदा ने डिज़ाइन किया। ऐसा नहीं था जा रहे थे रोक लिया वहीं रुक गए और ये हो गया, ऐसा नहीं था, प्लान था। ये प्लान इंसानियत की बका के लिए, देखिए हर काम और जितना मुश्किल काम, जितना बड़ा काम, जितना तूलानी काम हो, उसके लिए पेपर वर्क भी उतना ही करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप सोचेंगे तफक्कुर करेंगे, उतना जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई है, काम है, बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, उतनी अच्छी हो। जितनी जल्दी जल्दी में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, उतना हल्का एक बिल्डिंग बनती है, बगैर बुनियादें खोदे मकान खोखला होता है, ज़रा से झटके से जलजले से गिर जाता है। लेकिन दुनिया के हर हवादिस को तोड़ना कि धूप छाँव जलजले गुजर जाएं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस बिल्डिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़मीन तक नीचे खोदना पड़ता है, स्ट्रक्चर मवाद चीज़ें वैसी ही डालनी पड़ती है। इस्लाम अल्लाह का दीन, इस दीन के दुश्मनी भी उतनी ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था कि दुश्मनी, हर नबी के मुकाबले में दुश्मन आते रहे, और पूरी ताकत हर जमाने में आई कि किसी तरीके से अल्लाह के दीन को गिराया जाए। और ये इत्तफाकी नहीं था, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जाती किसी के मफादात कम हो रहे थे, ऐसा नहीं था, खूब ये सिस्टम ऐसे ही था। जब अल्लाह ने हजरत आदम को खल किया तो शैतान ने कबूल नहीं किया, और शैतान ने जब कबूल नहीं किया तो शैतान ने मोहलत मांगी है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ये पस मंजर के असल जंग किसकी है, असल जंग हक और बातिल का मारका है, इत्तफाकी जंग नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि पूरा आलम इमाम हुसैन के गम में है, ये इत्तफाकी नहीं है। कितने और इनकलाब आए, कितने और हवादिस हुए, किसी को याद नहीं रहता, ये याद है सबको। क्यों याद है? क्योंकि ये जो शख्स करबला आया था वो अंबिया का वारिस था, विरासत लेकर आया था ना। सारे नबी, सारे नबियों का काम क्या था? अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना है। अब नबी तो कोई भी नहीं है, तो उधर हर नबी के मुकाबले में जो आता गया वो भी अपने औज पे पहुंच चुका था। वहां सिर्फ एक यजीद नहीं था, यजीदियत थी, जिसके बातिन में फिरौनियत भी थी, नमरूदियत भी थी, हामून भी थे, और कानूनियत भी उसी के अंदर मौजूद थी। यानी पूरा सिस्टम जितना शैतान अपग्रेड कर सकता था उसने अपग्रेड किया। जहां जहां वो मुकाबले में आता गया, वहां वहां वो मात खाता गया, खाता गया। यहां उसने बहुत मेहनत की थी। आप शैतान को हल्का ना लिया करें, इब्लीस को कभी भी हल्का ना ले, कोई भी हल्का नहीं ले। बड़े बड़े औलिया ने, मैंने आपकी खिदमत में विषय

ये बहुत सारे लोग मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे, फलाने देखें आप आलिम यूं कर रहे हैं, फलाने नुआ खान को देखें आप, नहीं है जाने मोहतरम, जिक्र हो रहा है, हो रहा है जिक्र, किसी को वैसे अच्छा लगता है, किसी को ऐसे अच्छा लगता है। ये वक्त एक दूसरे को नुक्ताचीनी का नहीं है, उम्मत एक हो चुकी है। और ये साजिश यही है आपके सामने, जो चीज घबराहट है इबलीस को वो यही है कि ये सारे लोग एक छत के नीचे आ रहे हैं, एक परचम के नीचे आ रहे हैं। ये वही परचम है जिसे करबला में हजरत अब्बास ने गिरने नहीं दिया, वही परचम है जाने मोहतरम। ये निजाम निजाम विलायत अली है और ये उसी के नीचे है। 12 इमाम को मानने वाले अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर है हमारी, क्योंकि अहले सुन्नत बरादरान आते हैं और लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं, ये बहुत सारी बातें बहुत सारे हमारे मोमिन भाइयों को पता होती है, रिपीट इसलिए करते हैं कि ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो और अकीदा वाजे हो सके। ये जो हमारे इमाम हैं जिनको हम इमाम कहते हैं, ये मासूम है। और सही बुखारी, सुनन इब्ने माजा, अहमद बिन हम्बल, जितनी भी किताबें हैं अज़ान मोहतरम, खासतौर पर मुस्तनद किताबें, इन सब के अंदर मुतवातिर एक हदीस मौजूद है और भी बहुत सारी हदीसें। एक हदीस जो मैं आपकी खिदमत बयान कर रहा हूं, और वो हदीस जो है वो पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा आपकी खिदमत में रिपीट करता रहता हूं ताकि ये जहन में बैठ जाए। फरमाते हैं कि कयामत में अगर एक दिन भी रह जाएगा तो उस एक दिन को अल्लाह इतना तुलानी कर देगा कि उसमें वो आएगा जो मेरा हम नाम होगा, यानी रसूल के नाम का नाम होगा, मेरी औलाद में से होगा, और दुनिया को अदालत से भर देगा जैसे दुनिया जुल्म से भरी हुई है। अब वो जो आएगा वो अल्लाह का नुमाइंदा है और हमारे अकायद में अल्लाह का नुमाइंदा मासूम होता है। यही एक सबसे बड़ा फर्क है हमारे फिरके में और बाकी फिरके में। इसमें कोई वो नहीं, भारत लोग सबको मानते हैं, सब हस्तियों को मानते हैं, अतः जितने भी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हनफी, यानी ये सब मानते थे। किसको? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को। मानते थे, इमाम को मानते थे। तो हमारे इमाम मासूम होता है। और असना अशरी किसको कहते हैं? 12 इमाम के मानने वाले को। तो जो 12 इमाम को मानता है वो मासूम है। अब उसके बाद देखो, जब तक इमाम गैबत में है तो कोई ना कोई सिस्टम तो इमाम तक लेके जाएगा। जाहिरी तौर पर अगर कोई सिस्टम लेके जा रहा है तो वो यही विलायत फकी का सिस्टम है कि जो हमें, क्योंकि ये जो भी मुश्तहद होता है वो नायब इमाम होता है, जैसे इमाम खुमैनी थे, रहबर शहीद थे, आयतुल्ला सिस्तानी इतने बड़े मुश्तहद हैं, और अभी रहबर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई नायब इमाम है, नायब इमाम है, मासूम नहीं है, मासूम हो ही नहीं सकते, खूब नौकर है। खुद कहते हैं अपनी किताबों में, हम उनके गुलामों की कदमों की खाक है, लेकिन क्योंकि वजूद में विलायत को लिया हुआ है तो दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए हैं। असल ये है, देखिए असल चीज इंसान की जिम्मेदारी है। करबला जिम्मेदारी सिखाती है, करबला ये नहीं सिखाती कि आओ और चले जाओ, नहीं, आए हो जिम्मेदारी को अदा करो, जिम्मेदारी को तुमने अदा करना है, छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के जाने वाला इमाम की अदात नहीं करेगा जाने वाला। तो जैसे कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, करबला विलायत मदारी का नाम है, यानी विलायत पर ओबे करना, विलायत को कबूल करना, खूब ये जरूरी है। करबला अकलानियत है, अकल की गुफ्तगू की, करबला सिर्फ जज्बात और एहसासात नहीं है, अकल औच पर है। खुदा भी किसी को पसंद करता है तो उसे

मैंने अपने भाई के साथ अच्छा रवैया नहीं किया, अपने दोस्त का चार लोगों में बैठा हुआ था उसका मैंने मजाक उड़ाया, रोड पे जा रहा था एक शख्स या गाड़ी या बाइक गुजरी मैंने उसको पीछे से पता नहीं क्या कह दिया। नोट करें, ये सब हिसाब किताब है आपका। ये रोजे महशर जब दिखाया जाएगा उस वक्त बहुत मुश्किल होगी, उस वक्त माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है अपने आप को बेहतर करने का। इंसान जब तक जिंदा है अल्लाह ने उसे मौका दिया हुआ है, जैसे ही मरेगा केस खत्म। नजफ के अंदर एक शख्स जो लकड़ियां बेचता था, लेकिन उसने पढ़ा भी हुआ था, इबादत अच्छी थी, आबिद था, तो एक शख्स उसके पास आया, कहा मैं बहुत अरसे पहले यहां नजफ में किसी को अपना बहुत माल रखवा के गया था, अपने पैसे ये वो, कि मुझे मुश्किल थी, मैंने कहा अमानत रख लो। वो मेरा माल अब देने से इनकार कर रहा है, मुझे दे नहीं रहा, मगर वो शख्स आपके दर्स में आता है, जब आप दर्स देते हैं वो आता है। उसने कहा ठीक है चलो, उसको दर्स देने में शुरू किया। कहा मैं, वो जो शख्स था लकड़ियां बेचने वाला आबिद शख्स था, कहते मैं एक दिन रात को सोया, मैंने ख्वाब में देखा रोजे महशर है, रोजे महशर मुझे पूरे सिरात से लेके जा रहे हैं, अचानक से जहन्नुम से एक शख्स बाहर आया, यहूदी, और कहा मेरा वो एक धर्म वापस करो। मैंने कहा तुम्हारा धर्म? कहता हाँ, तुमने मेरा एक धर्म देना था जो नहीं दिया, मुझे वापस करो। मैंने फरिश्तों से बोला इसको हटाओ। कहा नहीं, ये दुनिया का मामला था, ये दुनिया में तय करके आते। मैंने उसकी बहुत इल्तमास की, वो माना नहीं। उसने कहा अगर ये आग में दहकता हुआ हाथ मुझे अपने सीने में लगाने तो मैं जाने दूंगा। कहा उसने वो आग बगोला उंगली को मेरे सीने में लगाया, मेरा सीना जल गया, अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सीने में देखा स्याह दाग था। हाँ, एक धर्म था, मैं देना चाहता था, मैं दे नहीं पाया, रह गया, भूल गया, गलती हो गई। तो कहा इस दुनिया में एक जर्रा भी अगर किसी का देना होगा उस दुनिया में देना पड़ेगा। मुंह से निकला हुआ जुमला उसका जवाब देना पड़ेगा। जवान है आप, जाने मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस लेकर आया हूं कि जिसमें बहरहाल इमाम फरमाते हैं कि पांच तरह के दोस्तों से, पांच तरह के दोस्तों से दूर रहो। ऐसे ग्रोह से जो ये क्वालिटी सिफात रखते हो, यानी ऐसे हो, एट्रीब्यूट्स रखते हो, इनसे दोस्ती मत करो। पहला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम कहते हैं कि इय्याका व मसाहिबतुल किज़्ज़ाब फइन्नहु बिमंज़िलतिस सिराब। इमाम फरमाते हैं कि झूठ बोलने वाले के साथ हम नशीनी से, यानी बैठने से परहेज करो। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को वाक़े के खिलाफ बयान करता है। झूठ बोलने वाला जो भी वाक़या हुआ होता है उसको अपोजिट बयान करता है, उसके साथ बैठो नहीं, हर बात को झूठ में करेगा। कोई चीज हुई होगी उसको गलत बयान करेगा, कोई चीज नहीं हुई भी वो तुम्हारे लिए बयान करेगा। झूठे के साथ बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ में झूठ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हमें एहसास नहीं है। आपको पता है गुनाह कबीरा में झूठ बोलने वाले के मुंह से ऐसी बू निकलती है मलाइका परेशान होते हैं। आसान नहीं, और हम तो मजे से, कहां हो? अभी घर में बैठा हूं, बस बस रस्ते पे हो, देखो देखो पहुंच रहा हूं, पहुंच रहा हूं, यार ट्रैफिक था यार बड़ा बड़ा, बस तुम्हें तो पता है रोड कराची की कैसे, घर से ही नहीं निकला आदमी, ट्रैफिक में डाल दिया, रोड में डाल दिया। झूठ, झूठ, नॉर्मल झूठ। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो कहते थे टेलीफोन पे जो पूछते हो क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कर रहा। कहा झूठ है,
कुछ तो कर।

0: बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था।
1: हाँ घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
0: ठीक है फिर नमाज के बाद मिलते हैं।
1: उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे?
0: मैं मजबूर हूँ।
1: लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ।

0: तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूं। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूं। जाओ।
1: क्यों दरवाजा नहीं खोला?
2: तुम किससे बात कर रहे थे? निगहबान पूरे शहर में फैले हुए हैं, शायद उनका हाकिम मुआविया वासले जहन्नम हो गया है। वो नमाज के लिए भी नहीं आया।
3: फिर नमाज किसने पढ़ाई?
4: मरवान।
3: मरवान ने?
2: क्या खबर है?
3: कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन शहर के हालात खराब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माविया का कत्ल हो गया और किसी को खबर ना हो और ये लोग हुकूमत पे काबिज हो जाएं?
4: मरवान, वो मुआविया की जगह आना चाहता है।
3: वो बहुत चालाक और धोखेबाज है। आज वो अकेला नमाज के लिए आया।
4: मैंने कहा नहीं था?
5: तो यजीद क्या, उसका क्या होगा?
3: यजीद? वो एक बेवकूफ और बेहुदा इंसान है। मुझे यकीन है मरवान उसको मरवा देगा।
4: खुदा की कसम, अगर हारिस इजाजत दे तो कल ही मैं मरवान को उसके मुहाफिजों के दरमियान एक ही जरबत से हलाक कर डालूंगा।
6: जल्दबाजी ना करो बेटा, हम खुद भी इजाजत नहीं रखते। हम हसन इब्न अली के ताबे हैं, वो खुद मौलाए कायनात के फरमान का हुक्म जारी करेंगे। ये समझ लो कि हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। रशीद को देखा?
3: हाँ, आपका पैगाम पहुंचा दिया। वो नमाज के बाद आएंगे, इससे पहले आने की जरूरत नहीं थी।
6: हक उसके साथ है। मुआविया का दरबान जो हुआ, नमाज पढ़ ली?
3: नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खुदा उस पर लानत करे। अरे, मेरी नमाज कजा हो जाएगी।

0: سلام عليكم رشيد.
1: عليكم السلام.
0: क्या खबर है रशीद?
1: कहां पर?
0: वही महल में। सुना है कि माविया को हलाक कर दिया गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
1: सलाम अलैकुम।
2: अलैकुम अस्सलाम।
0: सुना है कि माविया मारा गया, क्या ये बात सच है?
2: कहते हैं खंजर ने उसके दिल को चीर दिया और उसकी जान निकल गई।
0: कहते हैं कि खंजर जहरालू था।
2: भाई आप क्यों खामोश हैं?
1: क्या कहूं, वो जो तुमने सुना है लोगों की, मोमिनीन की और यारान अली की दिली आरजू है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
2: बताओ हकीकत क्या है?
1: अगर हकीकत कहूंगा तो शायद बर्दाश्त ना कर सकोगे।
0: बात क्या है, हमारी जान पे बनी है।
1: मुआविया जिंदा है और बिल्कुल सही और सालिम है। उस शख्स के खंजर ने मामूली सी खराश के सिवा और कुछ नहीं किया और तबीब ने उसका फौरन मुआलिजा कर दिया।
2: तुम्हें यकीन है?
1: मैंने खुद उसे देखा है, हशाश बशाश चीख रहा था और कहकहे लगा रहा था, खुशी से पागल हुआ जा रहा था।
2: कैसी खुशी?
1: कैसे बताऊं, उस शख्स ने ऐसी खबर दी जो बरसों से माविया की दिली आरजू थी और उसको सुनने के लिए बेचैन था।
0: कौन सी खबर?
1: यही कि मौला अली को जरबत लगी है और वो बिस्तरे शहादत पर है।
2: ये झूठ है।
1: मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब कासिद कूफे से पहुंचा और उसने खबर की तस्दीक की तो मुआविया अपने साथियों के साथ जिंदान पहुंचा। मुआविया ने उस शख्स को आगोश में लिया और बोसे देने शुरू किए। शिद्दत खुशी से लरज रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आईं।
2: वाह मुसीबत,
0: हम सब यतीम हो गए।
3: बड़ी अहम खबर, अमीर को खुदा ने बचा लिया। अमीर खंजर के वार से बच गया, तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया। अमीर ने तुम लोगों की दिल जोई की खातिर, तुम लोगों की दिल जोई की खातिर कातिल को सरेआम फांसी की सजा सुनाई है। तुम सब यहाँ जमा हो जाओ और अमीर को खुश करो, बस अमीर आने ही वाले हैं, बस अमीर आने ही वाले हैं।
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
5: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे मार डालना चाहिए,
5: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मार देना चाहिए,
5: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
5: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे मार डालना चाहिए।
5: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे मार डालना चाहिए,
5: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
5: चाहिए।
4: उसे मार देना चाहिए,
5: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार डालना
6: चाहिए। ऐ लोगो, ये कूफे का रहने वाला बदबख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन माविया इब्ने अबी सुफयान के कसम खुर्दा और जानी दुश्मन अली की तरफ से भेजा गया है।
7: कौन उसे नहीं जानता? हम सब जानते हैं कि इसका जहन साजिशों से भरा हुआ है और मोमिनीन को रसूल अल्लाह के जानशीन यानी मुआविया इब्ने अबी सुफयान के अजीज वजूद से महरूम करने के लिए इसने क्या क्या

0: साजिशें की हैं।
1: तुम सब इसे पहचानते हो, ये वही है जिसने सिफीन में तुम्हारे अजीज और अकारिब को खाक और खून में गलतान किया है।
2: वही शख्स जिसकी नजर में किताब खुदा की भी कोई अहमियत नहीं।
1: जान लो, ये वही शख्स है जिसने नमाज जो कि सुन्नत पैगंबर थी उसको छोड़ दिया, उसकी मुखालिफत की और उसे तर्क कर दिया।
3: कौन उसे नहीं पहचानता?
2: तो कौन है वो?
0: ऐ लोगो, देखो और खुशियां मनाओ कि अमीर अल मोमिनीन तुम्हारे दरमियान सही और सलामत मौजूद हैं।

0: मस्जिद में नमाज के वक्त इस शख्स ने मुझ पे हमला किया और मेरी जान लेनी चाहिए, लेकिन खुदावंद आलम ने मलकुल मौत को मुझसे दूर रखा और अपने आबाओ अजदाद से मुलाकात की नेमत से मुझे महरूम कर दिया और मुझे तुम मोमिनीन की मजीद जिल्लत और रुसवाई सहने पर मजबूर होना पड़ा। अगर यही मर्जी इलाही है तो मैं राजी और खुश हूं, लेकिन कल से आज तक समझ ना पाया कि ये शख्स और इसके साथी मुझे किस जुर्म में मौत का मुस्ताहक समझते हैं। मगर मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या मैं शबो रोज मुसलमानों की दुनिया और आखिरत संवारने का फिक्रमंद नहीं हूं? क्या मैंने अपनी जिंदगी को तुम लोगों की खिदमत गुजारी में बसर नहीं की? क्या कोई हराम लुकमा मेरी हलक से उतरा है? क्या किसी की इज्जत और नामूस पे मैंने बुरी नजर डाली है? या किसी बेगुनाह का खून बहाया है? क्या मैंने दीन मोहम्मद में कोई तहरीफ और तशरीह की है? यकीना परवरों, दीन मोहम्मद के दुश्मनों, बेवकूफों, बताओ कि मैंने इस आलम ज़ईफ़ी और बुढ़ापे में तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है कि इस कदर तुम्हारे बुग्ज और हसद का शिकार बना हुआ हूं? लोग कहते हैं कि अबू तुराब का भेजा हुआ है और कहते हैं कि अली ने उसे मेरे कत्ल पे मामूर किया है।
1: ये अली पे डाल रहा है,
0: ये जानते हुए कि मौला अली ऐसे घटिया काम नहीं करते।
2: देखो, अली पे इल्जाम लगा रहा है।
0: जो कुछ ज्यादती मुझ पे की है वो तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो ज्यादती तुम लोगों पे की है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ सकता इसलिए कि तुम्हारा हक है। चूंकि अली का भेजा हुआ है, मैं उससे इंतकाम लिए बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे छोड़ सकता हूं जिसका हक नहीं रखता? क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसा इख्तियार नहीं दिया है। अब मैं तुम लोगों के सामने अपने खुदा से वादा करता हूं और दरखास्त करता हूं कि परवरदिगारा, मैं इस फानी दुनिया में अपने और अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं चाहता। अपने जायज हक से भी दस्तबरदार होता हूं। अब तुम्हारा फैसला खुदा का फैसला होगा और इसकी खिस्मत का फैसला तुम लोग करोगे। अगर उसे गुनाहगार समझते हो तो उसे सजा दो, या अगर उसे बेगुनाह समझते हो तो उसे आजाद कर दो। जो तुम लोग चाहोगे वही होगा। मैं
3: उसकी सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे मार डालना चाहिए,
3: कत्ल कर देना चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए,
3: सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे कत्ल कर देना चाहिए,
3: सजा मौत होनी चाहिए,
4: उसे मार।

0: वसीयत फरमाई है कि शब को गुसल दें और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर।
1: शायद वो हजार रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे।
0: अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते।
1: इस बुजदिल जमात से किस कदर बेजार थे।
0: अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह के फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा।

0: इनके कद्दो कामत को देखो, चलो उछल के दिखाओ, देखे तुम्हें कौन खरीदता है। इसके पास जो हुनर है उसकी मिसाल पूरे शाम और रूम में नहीं मिलेगी। वाह वाह, वो देखो शहरे शाम के बुजुर्ग और सरदार आ रहे हैं। ये मेरे आका और सरदार, आइए एक निगाह इन गुलामों पे डाल के देखिए। याकूब जैसा गुलामों का ताजिर पूरे शाम में नहीं मिलेगा। जरा इन पर नजर तो डालें, मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच गई होगी। तुम्हारी सूरतें जानी पहचानी लगती हैं। क्या इससे पहले मैंने तुमको गुलाम नहीं बेचे? मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तुम्हारे सरदारों को गुलाम बेचे हैं। तुम में से कितनों को मैंने गुलाम बेचे हैं? सरदार, आपको मैंने 4 गुलाम बेचे हैं। वो 4 गुलाम क्या आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि वो आपकी खिदमत कर रहे होंगे।
1: तू?
0: मैं?
1: नहीं, वो। तू?
0: इनमें से कौन सा?
2: हरामखोर। मैं समझ रहा था कि तू सहरा में हलाक हो गया। मलून, तेरे खंजर से मेरी पुश्त अभी तक जख्मी है। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो, पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है, पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो, पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे।

0: जाओ जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए।
1: इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँ। आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ।

0: आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू है, खरीद लो। आओ, आपको चाकू नहीं चाहिए?
1: क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ।
2: दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो।
3: अहमद, क्या बात है?
2: इसकी जान खतरे में है।
3: कौन उसे मारना चाहता है?
2: नहीं मालूम, शायद माफिया के निगेबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। अना जाने माफिया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी।
3: और तुम उसे यहां ले आए?
4: आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहां नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं।
1: क्यों?

0: अय अमीर, तुम्हारे बेटे की जान की कसम, अबू तुराब को उनके हाल पर छोड़ दो। हमें उनसे कोई काम नहीं, उनसे जंग करके सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आएगा।
1: अमीर, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कबीले वालों की अभी जंगे सिर्फ

0: छोटा हो गया है। मेरे कबीले की औरतों के यहाँ इतने बच्चे नहीं पैदा होते कि जो जंग के कुश्तों का जुबरान हो सके।
1: उसने एक जरबत में हमारे दो बेटों को खाक में मिला दिया।
0: भी उस जुल्फिकार के जरिए
1: अपने पाबरहना साथियों के साथ
2: मुझसे तो इस तरह लड़ रहा था गोया उहद खंदक के काफिरों से लड़ रहा है, ये नहीं सोचा कि हम भी मुसलमान हैं।
3: तुम आखिर मुसलमान ही कब हुए जिसकी हमें खबर होती?
2: लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान नहीं हूँ।
4: हमारी खुशख्याली तो देखो, हमने सोचा कि रूम से जंग दरपेश है जिसका मजा हम चख चुके थे। आपका पैगाम मिलते ही हम फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो। रूम के शहर तो आबाद हैं।
0: अब अगर हम जंग करेंगे तो उसके एवज में हमें कोई माल गनीमत, कोई खजाना, कोई गुलाम मिलना चाहिए।
2: नहीं, हमें माफ कर दीजिए। गोया तुम्हें खबर नहीं है कि अबू तुराब अब बिस्तर मर्ग पे है।
0: झूठ है, अबू तुराब बिस्तर पर मरने वाले नहीं है।
3: तलवार से जख्मी हुआ है, सर में गहरा जख्म है उसके।
0: मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, कोई तलवार इतनी बड़ी नहीं है कि जो उन तक पहुंच सके। मैंने खुद आजमाया है।
3: क्यों नहीं हो सकता, नमाज की हालत में मेहराब में पीछे से वार किया उस पर।
0: अमीर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं?
2: एक मजाक की खातिर मैंने तुमको तुम्हारे बीवी बच्चों से अलग नहीं किया ताकि तुम दमिश्क की गलियों में अपने खोए हुए गुलाम की तलाश में ठोकरें खाते फिरो। अहम मसला, मैं जिस मौके की तलाश में था वो मौका आ चुका है। सिपाहे कूफा की कमर टूट चुकी है, बगैर अबू तुराब के मुकाबले की ताब नहीं रखते। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे। बताओ, बता दो।
5: सुनो, कूफे से कासिद आया है, अली को रात को गुस्ल दिया है, उनके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई और खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है।
6: ए शाम वालो, जान लो और बाखबर हो जाओ कि अली इब्ने अबी तालिब अपने एक चाहने वाले की तलवार से कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से पूरे इराक में फितना और फसाद खड़ा हो गया है। फितना गर इस आग को शाम तक फैलाना चाहते हैं। जो तलवार उठा सकता है अपनी तलवार उठा ले और फितना गर के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए।
7: ये दरबदरी और जिलावतनी बर्दाश्त की, मुझे असीरी बर्दाश्त करना पड़ी, गुलामी झेलनी पड़ी, ताजियाने खाने पड़े, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी उम्मीद में कि अपने बाप की वसीयत पर अमल कर सकूं और अली के कदमों तक पहुंच सकूं। मगर अंजाम क्या हुआ, लेकिन मैं अभी तक शाम में हूं, माविया के कुत्तों के खौफ से इस घर में पोशीदा हूं और खवारिज के भेड़ियों ने मेरे मौला को शहीद कर डाला।
8: अगर आज हमारे लिए शब अज़ा है तो मुआविया के लिए ईद है। वो खुद को बिला मुकाबला खिलाफत का वारिस समझता है, अतराफ के कबीलों के सरदारों को जमा किया है और कूफे पर हमले का इरादा रखता है। कबल इसके कि अली का जानशीन मुअय्यन किया जाए, कूफे पर कब्जा कर लें।
9: पिदर, आप जानते हैं मौला का जानशीन कौन होगा?
2: अगर कूफे वाले हक़ और इंसाफ से काम लें तो अबा मोहम्मद को होना चाहिए।
10: हमारे लिए मुहिम नहीं है कि कूफे वाले किसको चुनते हैं, हमारी नज़र में तो जानशीन हसन इब्न अली हैं।
9: हमको अहले कूफा की राय से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं।
10: हमें न कूफे वालों की बेयत पर एतमाद है न उनकी खयानत की फिक्र है।
11: हम मजबूर नहीं है कि हर किसी के आगे गर्दन झुका दें।
10: हम हसन इब्न अली की बेयत कर लेते हैं और हमारे ख्याल में امام علی کے تمام باوفا دوستوں کو بھی ان کی بیعت کر لینی چاہیے.
2: اب ہمارا بس ایک ہی وظیفہ ہے،

और वो ये है कि अबा मोहम्मद को माविया के फितनों से जल्द ही आगाह कर दें।

0: तो जाओ, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ, जाओ।
1: कौन हो?
2: सबका पानी ले जाओ।
1: जाओ।
3: हे मर्द पुरुष इधर है।
4: कहाँ है? कहाँ? वहां दरवाजे के पास।